बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स तुसी सुन रहे हो एफएम रेनबो जलंधर। सवेर दे 7 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। अज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विश्व पद्धर ते मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज कलकत्ता दे विच स्वदेशी तौर ते बने भारतीय समुद्री फौजां दे 3 समुद्री जहाजा INS दुनागिरी, INS संशोधक अते INS अग्रे नूं कमीशन देंगे। नीट UG मुड़ प्रीख्या अज 2,79,000 तों वध उम्मीदवारां दे लई भारत दे 552 शहरां अते विदेश

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी सबनों। मैं कि जी बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम थोड़ी अपनी आरजे अंजलि दे नाल। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, 103.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी जलंधर, आकाशवाणी अमृतसर और सारे दे सारे पंजाब नाल दी नाल जिथे जिथे भी मेरी आवाज आ रही है सारे दे सारे स्रोतियां दा मोस्ट वेलकम है जी। अज दे इस प्रोग्राम दे विच संडे दी मॉर्निंग, फंडे दी मॉर्निंग, एक रिलैक्सिंग मॉर्निंग पर देखो हर एक मॉर्निंग जिहड़ियां ना ऊर्जा दे नाल भरी हुंदी है, नवी उम्मीदां दे नाल भरी हुंदी है, नवे जोश दे नाल, नवे मौकियां दे नाल भरी हुंदी है। और अज दी इस सवेर है ना जिहड़ी, ये वैसे भी बड़ी खास है। सब नूं पता है ना अज है जी साड़ी 21 जून, और 21 जून की जिहड़ी तरीक है ना साल दे सब तो लंबे दिन कह दिए है ना। सानूं धुप जिहड़ा दिन है ना, दिन का समा कुछ ज़्यादा हुंदा है, उस चीज़ का एहसास दवाउंदा है। और अज दे इस दिन नूं असीं मैं क्या होर वधिया तरीके नाल सैलीब्रेट कर सकते हैं। हर सवेर सानूं जिंदगी दा ना एक नवा मौका दिंदी है, अपने आप नूं होर बेहतर बनाउण दा, होर तंदुरुस्त बनाउण दा, होर खुश रहण दा मौका दिंदी है। सो मैं कहा जी अज दी इस तरीक नूं, अज दे इस दिन नूं भी असीं एक नवी उम्मीद दे वांग, नवे मौके दे वांग, नवे जोश दे नाल इस दिन की शुरुआत करते हैं। और अज वैसे भी 21 जून है, दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सब तो पहला तो मुबारक सारे लिसनर्स नूं, योगा जो कि साढ़े भारत की ऐसी पहचान है जो अज दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उत्ते मनी जाती है, जिसनों अपनाया गया और अज उस दे नाल जुड़िया होया दिन। सेहत दे लई जिहड़ा है योग, ये सिर्फ बीमारियों नूं दूर नहीं पहुँचाता बल्कि सानूं तंदुरुस्त शरीर, तंदुरुस्त मन, शांत मन और पॉजिटिव सोच देण दा भी एक तरीका होंदा है। सो साडा शरीर ना लगभग, मतलब हर एक बॉडी का वखरा हिसाब हुंदा, पर लगभग हर रोज़ 20,000 तो वध सांह लैंदा, पर असीं किन्नी वार अपने साहां दे विच ध्यान दिंदे आ, कदी इह सोचिआ? पर योग

0: FMN 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर, 103.6 MHz आकाशवाणी अमृतसर दे सरोते सुन रहे ने जी FM रेनबो चैनल दे उते गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम अपनी आंची अंजलि दे नाल। और 8:07 सवेर के हो गए ने और इंटरनेशनल योगा डे के मौके दे उते जिवें कि मैं तुहानू कहा सीगा कि असी योग की हैगी आ इह साडी जिंदगी दे विच किवें महत्व रखदी है, इस सब दे बारे खास जिहड़ी है अज गलबात तुहानू सुनावांगे। सो अज साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े ने सिमरन हरी जी, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर ने, MD सुजोक अक्यूप्रेशर्स ने और बियॉन्ड हीलिंग योगा स्टूडियो जिहड़े ने जलंधर दे विच चलाउंदे ने, और कितना वो लोगों की मदद कर रहे हैं इस योग दे राही, योगा दे राही उन्हां दी जिंदगी सवारन दे विच उन्हां दे कोलों जाणांगे। हैलो मुबारकबाद सारे लिसनर्स नूं मुबारकबाद, और तुहाडे कोलों जानना चाहांगे कि सर इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाउण दी शुरुआत क्यों होई सी, किस तरह इस दी शुरुआत कीती गई सी?
1: जिवें कि सब लोग जानदे ने कि साडा जिहड़ा भारत देश है ये पूरे खिते दे विच पूरे पृथ्वी ते अगर असीं कहीए ते कदी कोई अतिशोक्ति नहीं होएगी कि ये विलक्षण चीजां नूं अपने अंदर रखदा है, चाहे वह ज्ञान दा विषय होवे, चाहे वह किसी होर प्रगति दा विषय होए, इहदे कोल बहुत वधिया जिहड़ी चीज है वो योग जो आज सब लोग उसका लाभ लै रहे ने। सिर्फ भारतवर्ष दे लोग ही लाभ आंदे हुंदे ने, लेकिन ये संकल्प जड़ा साढ़े प्रधानमंत्री दा सी कि ये ज्ञान जड़ा है, ये योग दी धारा है पूरे विश्व दे विच फैले
0: जी।
1: उस मंतव नू मुख रखदिया होया ये दिन अज दा चुनिया गया सी। 2014 दे विच इस दा प्रस्ताव रख्या गया यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली दे विच
0: जी।
1: 11 दिसंबर 2014 नू ये निर्धारित होया कि 21 जून वाले दिन ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वजो मनाया जाएगा
0: जी।
1: पहली बार ये जो 2015 च मनाया गया तो 170 देशां दे विच नू एक साथ कट्ठे रल के मिला मनाया गया। उन लगभग एदे विच होर शमूलियत हो गई है, लगभग 190 देशां दे विच ये योग दिवस मनाया जा रहा
0: साडी
1: ऋषियां दी बहुत वड्डी देन है
0: जी, जी।
1: जिस नू जीवन जीन दी तनाव मुक्ति चिंता तो रहित इना चीजा नू असी प्रसारित कर सकी, मुख मंतव साडा ए है
0: जी जी। ते आम साडी जिंदगी रोजाना दी असी जिंदगी दे विच देखदे आ इना स्ट्रेस भरी साडी लाइफ है, योग किदा मदद करदा या किस तरह ए सानू हील करन दे विच मदद कर सकदा या?
1: जी जी, योग असल दे विच यात्रा है अपने अस्तित्व तक पहुंचन दी। और जो असी अपने अस्तित्व तो जिवें असी आम भाषा च भी कहने कि जमीन नाल जुड़े रहिए ते असी बड़े सुकून पुर रहने हां
0: जी,
1: ते इसे तरह जो साडा आत्म स्वरूप है जदों असी ओदे नाल जुड़े रहने हां ते असी बहुत सुकून पुर रहने हां, ते ये जिहड़ियां व्याधियां ने चिंता कह लिए डिप्रैशन कह लिए ये सब चीजा जिहड़ियां ने ये सानू अपनी प्रकृति तो मूल तो जदों भी अलग हुंदे हां फिर ये व्याधियां आंदियां ने
0: जी।
1: योग बहुत अच्छा साधन है क्योंकि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि लोग योग नू सिर्फ और सिर्फ शारीरिक व्यायाम समझते हैं। योग यात्रा सी अपने अस्तित्व अपने आत्म तत्व नू जानन दी, क्योंकि आत्म तत्व नू जानन वास्ते इस शरीर की जरूरत है। जिवें कि शास्त्रां विच साडे कहा जांदा है कि मनुष्य जिहड़ी देह है ये जन्म है बहुत ही भागा नाल मिलता है, ये सब दे नसीब नहीं हुंदा, और ये मिलन दा जिहड़ा उपलक्ष है कारण जिहड़ा है वो अपने आत्म तत्व नू जानन अपने स्वरूप नू जानन दी एक कोशिश और एक टारगेट है
0: जी। ते असी आजकल असी देखे कि काफी लोग जिदा योग नू अपना रहे ने, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी हुंदा है कि असी सवेर दे टाइम दे उत्ते कर सकते हैं, शाम दे टाइम दे उत्ते कर सकते हैं, ते किस टाइम

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

कानूनी सेवावां अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 दे तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्यायबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तों प्राप्त कर सकते हैं।

FM 102.7 MHz FM रेनबो चैनल तो से सुन रहे हो। सवेर दे 9 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस। अज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विश्व पद्धर से मनाया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के इतिहासक रेड रोड से राष्ट्रीय समारोह दे विच देश की अगवाई की। पंजाब समेत देश भर च अज योग समागमां का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कोलकाता दे विच स्वदेशी तौर पर बने भारतीय समुद्री फौजा के 3 समुद्री जहाजा INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रेड कमीशन करेंगे। नीट UG मुड़ प्रीख्या अज 22,79,000 तो वध उम्मीदवारों के लिए भारत के 552 शहरों और विदेशों के 14 शहरों के विच हो रही है। प्रीख्या केंद्रों से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए ने। सरकार ने जनतक हित दे विच 16 फिक्सड डोज कॉम्बीनेशन दवाइया के निर्माण विक्री वंड से पाबंदी लाई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 226 के श्रद्धालुओं का पहला जत्था नाथू लादरे राही चीन पहुंचा। मानसरोवर परिक्रमा 27 जून न होनी है। पंजाब चोन कमिश्न वालों हुशियारपुर नगर निगम नगर कौंसल गुरु हरसहाय जलालाबाद ममदोट नगर पंचायत के मैंबर की चोण लई चोण प्रोग्राम का ऐलान। पंजाब सरकार वालों 2437 ऑपरेटिंग ट्रेनिंग्स नू PSPCL दे विच सहायक लाइनमैन वजो भर्ती करने का फैसला। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी के मौके पाकिस्तान स्थित गुरुधामा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का जत्था आज श्रोमणी कमेटी के दफ्तर

0: बेटी ठीक ठाक हो जी? अज विश्व योगा डे है, जाने कि इंसान की सेहत को तंदुरुस्त रखने का दिन। इस दिन योगा दी क्लासां लगदियां है, हरेक तरह का योगा। मान लो आप योगे नूं एक दवाइयां तो रहित डॉक्टर भी कह सकते हैं। जिहड़ी बीमारी, कोई भी बीमारी आपां नूं है, ते योगा करन दे नाल वो बीमारी ठीक हो जाती है। बेटी ये अज तो नहीं, ये पुराने समय तो योगा चलता आ रहा है। योग गुरु योगा सिखाते हैं, योगा क्लासा भी लगदियां हैं। अपने प्रधानमंत्री साहब ने भी योगा क्लासा बारे गलबात की, सारे ही हिंदुस्तान के योगा डे बड़े प्यार सत्कार ना मनाया जाता है। स्कूलों और कई संस्थावां बनिया है जिथे योगा दियां क्लासां भी लाइया जांदियां है। योगा करन दे नाल रोगों तो रहित होने के तरीके भी समझाए जाते हैं बेटी। इस करके अपन अज योगा डे के उत्ते स्पैशल योगा क्लासा भी ज्वाइन कर लिया चाहिए, तो योगा करना भी चाहिए। सिर्फ अज का दिन ही नहीं, इन्हों अपनी रूटीन के बना लो ताकि आप निरोग रह सकी। अज बेटी इन्ना ही। मैं सतनाम सिंह रखरा बाघा पुराणा तो दिल अपना पंजाबी, सत श्री अकाल दोस्तों।
1: थैंक यू सो मच जी सतनाम जी, मैसेज भेजिया तुसीं। और वाकई ही योग जड़ी है ना, योगा है, वक्रे वक्रे करन दे आसन ने, वक्रे वक्रे योग नूं अपनाउण दे ढंग तरीके ने, पर ये जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउंदी है, जिंदगी नूं वधिया बनाउंदी है और सानूं किन्नी सारी स्ट्रेस तो जड़ा है फ्री कर देंदी है। बाकी साढ़े लिस्टर दोस्त प्रोग्राम सुन रहे ने, जिन्हें ने जो है प्रोग्राम मैं क्या सवेर का नहीं सुनिया, हूँ रेडियो सैट ऑन किया उन्होंने लिए, चलो वेलकम है जी, हूँ ही वेलकम है ना। मैसेजेस तुसी कर रहे हो और मदद करने लिए सिर्फ धन की जरूरत नहीं होंगी बल्कि एक चंगे मन की लोड़ भी होंगी है जी। हीरा सिंह लोपके सानू मैसेज भेजे है जी और सानू मैसेजेस होर भी आए ने, आज वाला सुन दे आ।
2: सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल जी।
2: वर्ल्ड फादर डे मनाया जा रहा
1: जी।
2: मेरिया कुछ सत्रां सरलेख बापू जी। गड़क दी आवाज पूरा अड़ब पर है ममता छां बापू, कोई ओड़ थोड़ लोड़ रहन ना देवे है ऐसी थां बापू, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਜਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲਫੇੜਾ ਕੰਨ ਕਰੇ ਸਾਂ ਸਾਂ ਬਾਪੂ, ਰਸੂਖ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਛਾ ਜਾਵੇ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਬਾਪੂ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਡਾਕ ਘਰ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬਾਪੂ, ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹੈ ਦਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਬਾਪੂ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦਿਵਸ ਮਾਂ ਬਾਪੂ, ਅੱਜ ਮਾਣ ਦਈਏ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣ ਨਾ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਬਾਪੂ, ਹੁੰਦਾ ਮਮਤਾ ਛਾਂ ਬਾਪੂ, ਮਮਤਾ ਛਾਂ ਬਾਪੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਦਣ, ਪਿੰਡ ਬਦੋਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
1: थैंक यू सो मच जी मनजीत जी। मनजीत जी तुसी मैसेज भेजिया और बापू की अहमियत दसण वाला एक खूबसूरत जिहा मैसेज जिहड़ा है तुसी सानू भेजिया और अज खास दिन है, खास प्रोग्राम है और इस खास प्रोग्राम दे विच मैं क्या तुसी भी शिरकत कर लो, फटाफट फटाफट जिहड़ा है 9855 10 10 27 नंबर के उत्ते मैसेज कर लो।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है जी दिल अपना पंजाबी। थोड़ी अपनी आर असली देना और मैसेजेस भेजने ने 98 55 10 10 27 दे उत्ते, और तुसी फटाफट मैसेजेस भेजोगे, फटाफट जिहड़ा है उस प्रोग्राम दे विच शामिल हो जाणगे। और मैं कहा जी फटाफट भेजो मैसेजेस, गीतां दा सिलसिला तां नाल दी नाल चल रहा जी। बाकी मैसेज आ गया जी, आपका प्यार यूं ही मिलता रहे, दिल में बस इतना अरमान है, हर सुबह आपकी मीठी बातें मुस्कुराहट मिले, मेरी जिंदगी आपके नाम है। ओए होए जी, ओए होए, मैं क्या जी, वाह जी, और किसी लिए इतना डुल जाना, हाँ चंगी गल नहीं है जी। गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी संडे फादर्स डे। और नाम सुनील कुमार जी, जम्मू एंड कश्मीर तो सानू ये मैसेज भेज रहे ने जी। अगला ऑडियो मैसेज आ गया जी साडे कोल, आ जाओ सुनते हैं जी की कहंदे ने साडे लिसनर दोस्त।
1: मान योग मैडम अंजलि जी
0: जी
1: ते सारे ही श्रोते जिहड़े इस टाइम दिल अपना पंजाबी नाल प्रोग्राम एफएम रेंबो दे नाल नाल जुड़े हुए ने ते इस प्रोग्राम दा आनंद माण रहे ने
0: जी,
1: सुन रहे ने सारिआं नूं प्यार सत्कार नाल सत श्री अकाल। सारिआं दे विचार बहुत ही वधिया ने, सारे बहुत वधिया विचार रख रहे ने, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜਵਾਬ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ,

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे साथ साझा की है बहुत ही रोचक जानकारी, और ऐसी जानकारी जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, और हमारे युवा साथी बहुत रुचि लेकर इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पर गए, तब उन्हें चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई कुछ ताम्र पट्टिकाएं उपहार स्वरूप दी गई, वो उपहार जो भारत की एक अमानत थी। ये ताम्र पट्टिकाएं भारत पहुंची हैं और हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे साथी इस पर बात कर रहे हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी है हमें कि हम ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानें, इनका क्या रेलिवेंस है, इनकी क्या समसामयिकता है, ये हम समझे, और साथ ही जिस साम्राज्य से ये जुड़ी है, चोल साम्राज्य, हम उस साम्राज्य को भी आज थोड़ा समझे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है इन ताम्र पट्टिकाओं का।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं।

0: इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: तो सुना आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कितनी रोचक तरीके से ये बताया है कि ये ताम्र पट्टिकाएं हमारे सामने इतिहास की एक खिड़की खोलती हैं, जिससे झांक कर हम अपना भविष्य देख सकते हैं। और इन ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानने के लिए, चोल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने दो विशेषज्ञों को। आपसे उनका परिचय करवा रही हूँ। हमारे साथ हैं देवेश विजय जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, शोध कार्य से आप जुड़े हुए हैं, इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। देवेश जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
1: हमारे साथ हैं मनीषा अग्निहोत्री जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर हैं। मनीषा जी, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद नीलम जी।
1: जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया कि हम चोल साम्राज्य के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही ये जो ताम्र पट्टिकाएं भारत आई हैं, अपने घर लौट कर आई हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मनीषा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या महत्व है इन ताम्र पट्टिकाओं का?
3: ये ताम्र पट्टिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में देखें, जब ये चोल साम्राज्य जिस समय अपने उरूज पर था, तो उस समय इस तरीके की संस्कृति जो है यहाँ पर प्रचलित थी। हमारे ज्यादातर जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स हैं, वो हम लोगों को कॉपर प्लेट्स पर मिलते हैं
1: जी।
3: और ये जो कॉपर प्लेट्स दिए जाते थे, इशू किए जाते थे, वो भूमि अनुदान से संबंधित होते थे, या जो है राजस्व से संबंधित होते थे, या कोई रॉयल डिक्री से संबंधित होते थे। तो ये जो चोलों की जो ताम्र पट्टिकाएं हमारे पास लाइडन से यहाँ पर पहुंची हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये हमारे इतिहास की जो है एक झलक देते हैं, एक जो हमारा अधूरा अध्याय था, उस अध्याय को वो कंप्लीट करते हैं
1: जी।
3: क्योंकि ये जो पट्टिकाएं हैं, इसके अंदर 21 जो है बड़ी प्लेट्स हैं और इसके अंदर 3 छोटी प्लेट्स हैं, और उसके साथ साथ ये एक रिंग से बंधी हुई है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक जो है रिंग लगी हुई है, जिसमें चोलों के जो शासन काल का स्टैंप है, वो स्टैंप लगा हुआ है, और उसके अंदर स्टैंप में आप अगर देखें तो वो 2 मछलियां बनी हुई हैं और एक बैठा हुआ आपको टाइगर नजर आता है, जो कि चोलास का जो है वो सिंबल था, शाही जो है वो सिंबल था
1: जी।
3: ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ताम्र पट्टिकाएं हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हम देखते हैं जो चोल शासक राजराज प्रथम थे, उन्होंने अनुदान दिया था, एक मोनेस्ट्री थी यहाँ पर नागपट्टिनम में, एक जो है मोनेस्ट्री बनाई गई थी, तो वहां पर एक गांव था अनई मंगलम, उसको जो है अनुदान में मोनेस्ट्री को दिया गया था, और वहां का जितना राजस्व था यहाँ पर इस मोनेस्ट्री को, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को अनुदान में दिया गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो विहार था या मोनेस्ट्री थी, उसको किसी चोल शासक ने नहीं बनाया था, बल्कि जो है एक शैलेंद्र जो शासक थे साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि ये जो ताम्र पट्टिकाएं हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, भाषा क्या है, तो हम देखते हैं कि ये द्विभाषी है। इसका जो पहला पोर्शन है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और दूसरा जो उसका भाग है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। जो पहला भाग है संस्कृत भाषा, अगर आप देखें कि इस समय प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जितने भी अभिलेख आपको मिलते हैं, तो उसमें संस्कृत भाषा से वो अक्सर शुरू होते हैं, चाहे आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख हैं, उसके अंदर सारे अभिलेख आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख में भी संस्कृत भाषा का आपको हिस्सा मिलता है। ये जो संस्कृत भाषा जो है वो मुख्यतः इन्वोकेशन से शुरू होता है ये हिस्सा, जिसमें की स्तुति की जाती है ईश्वर की, जिससे वो साम्राज्य जो है, जिसको अपना वो ईष्ट देवता मानता है
1: जी।
3: फिर उसके अंदर हमें जीनियोलॉजी मिलती है, वंशावली मिलती है चोल शासकों की। ये जो वंशावली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि चोल शासक अपने आप को एक लेजिटिमेट रूलर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप को विष्णु के भक्त बताते हुए अपने आप को सूर्यवंशी जो है शासक घोषित कर रहे हैं
1: जी।
3: हम जानते हैं कि वो क्षत्रिय स्टेटस क्लेम कर रहे थे चोलास, तो यहाँ पर उनकी ये जीनियोलॉजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं चोल शासकों की, उसको यहाँ पे बयां किया गया है
1: जी।
3: तो इस पोर्शन को प्रशस्ति पोर्शन कहा जाता है, और ये आपको ज्यादातर अभिलेखों में देखने को मिलता है, जिसमें कि बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं चोल शासकों की, उनको मेंशन किया गया है
1: जी।
3: दूसरा पोर्शन जो है वो आता है

0: तमिल में जो अनुदान दिया गया है इस विहार को उसका उसमें जिक्र किया गया है। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है किसी भी अभिलेख का, क्योंकि उसके अंदर वो सारे डिटेल्स होते हैं कि ये जो अनुदान दिया गया है एक पर्टिकुलर गांव का, जैसे हमारे संदर्भ में अनई मंगलम जो गांव है उसके राजस्व को अनुदान में दिया गया है, तो उसके अंदर बाउंड्री बताई जाती है कि उस गांव की बाउंड्री क्या है, उसका मेजरमेंट होता है वो उसके अंदर दिया गया होता है, और उसके अलावा क्या राजस्व लिया जाएगा, क्या एग्जेम्पशंस रहेंगी उनसे, क्या छूट होगी, वो सारे डिटेल इसके अंदर दिए जाते हैं।
1: जी, तो अपने समय का ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है।
0: बिल्कुल,
1: जिसमें हमें उस साम्राज्य के बारे में भी पता चलता है, जो घटना घटित हुई है यानी जैसे भूमि अनुदान की गई है उसके बारे में पता चलता है, फिर उससे जुड़े नियम भी हैं और भाषाई संपन्नता भी पता चलती है, और ये भी पता चलता है कि वो साम्राज्य अपने आप को लेकर, अपने स्तर को लेकर कितना गंभीर है, किस तरह से वो अपने प्रशासन से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें वो इंगित कर रहे हैं, चाहे वो अपनी स्टैंप हो या वो भाषा हो, वो सब बता रहे हैं। तो ये जो छोटा सा उपहार है ये हमारे सामने इतिहास के बारे में इतना कुछ बताता है, ये आपने बताया हमें। जी, बहुत ही रोचक ये जानकारी है। और मैं यहाँ अब देवेश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा मनीषा जी ने कहा कि हमें चोल साम्राज्य की विशेषताएं इस ताम्र पट्टिका से पता चलती हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम चोल साम्राज्य पर अब ध्यान दें तो साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, किस तरह से वो हमारे समाज से आज जुड़ती हैं।
2: मनीषा जी ने बहुत अच्छी विवरण दिया इनके जो स्पेसिफिक्स हैं ताम्र पट्टिकाओं के, पर कुछ चीजें होती हैं बिटवीन द लाइंस,
1: जी
2: वो समाज के बारे में बड़ी अच्छी हमें अंतर्दृष्टि देती हैं।
1: जी,
2: तो बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में चोल वंश की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पुस्तिकाएं हैं उनमें दक्षिण भारत का इतिहास
1: जी
2: उसकी ओर कभी कभी उपेक्षा रही है, तो इस वर्णन से उसकी ओर लोगों का ध्यान जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है, और खास तौर पे चोल वंश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चोल वंश करीब 400 साल तक कायम रहा
1: जी,
2: और इसको इंपीरियल चोलास भी इनको कहते हैं, इनके पहले अर्ली चोलास भी थे, उन सबको मिलाकर तो ये करीब 1000 साल का इनका शासन है, लेकिन जो 800 यानी 9वीं शताब्दी से करीब शुरू होता है, विजयालु जो प्रथम शासक थे इनके और राजेंद्र तृतीय 13वीं शताब्दी तक, तो ये करीब 400 साल तक इनका शक्तिशाली शासन रहा, ऐसा बहुत कम है, मुगल खाली 250 साल तक शासक किए थे, सल्तनत का शासन भी करीब 250 साल का था, मौर्य वंश तो केवल 150-200 साल का था
1: जी।
2: तो इतने लंबे शासन करने वाले और जो ओवरसीज जिनका एक्सपेंशन था इंडोनेशिया तक, मलेशिया और कंबोडिया, तो यहाँ भारतीय संस्कृति और को ले जाने वाला ये जो महत्वपूर्ण इतिहास है
1: जी,
2: उसकी ओर ध्यान आकृष्ट होता है इस वर्णन से। और इन ताम्र पट्टिकाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे आपने पूछा कि जो और समाज के बारे में हमें क्या बताती है, पहली बात तो यही है कि ये शिव भक्त थे चोल वंश के राजा, लेकिन वो एक बुद्ध विहार को लैंड ग्रांट दे रहे हैं
1: जी,
2: पूरे एक गांव का राजस्व उसके लिए सुनिश्चित कर रहे हैं, तो ये जो हमारे आज भी जो हमारे शासन की नीति है सबका साथ सबका विकास
1: जी,
2: ये वही नीति उस समय भी दिख रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो सभी धर्मों को पैट्रनेज दे रहे थे
1: जी,
2: कोई भेदभाव नहीं था, सर्वधर्म संभाव की थोड़ी सी झलक इसमें दिखती है
1: जी।
2: वास्तव में जो दक्षिण का इतिहास शुरू होता है उस संगम युग से हमें उल्लेख उसका विवरण मिलने लगता है, उस समय तक कई धर्म धार्मिक भावनाएं जैसे यहाँ का जो इंडिजिनस गॉड्स थे मुरुगन, उनके बारे में संगम में काफी वर्णन है, अभी पूरी तरह से जो वैदिक कल्चर है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ था बीच में, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रभाव था इस इलाके में, लेकिन पल्लव वंश और बाद में खासतौर पे चोल वंश के काल में शिव भक्ति विष्णु भक्ति ये सब ज्यादा स्थापित हुए और ब्राह्मणों को माध्यम बनाकर कृषि का विस्तार किया गया
1: जी,
2: अग्रहार उनको यही अनुदान दिए जाते थे ताकि वो गांव स्थापित करें
1: जी,
2: तो ये सब भी हमें पता चलता है। और एक बहुत बड़ी जो अच्छी चीज पता चलती है जो उस समय की और हमारे समाज की विशेषता रही है कि स्थानीय गांव के स्तर पर भी और शहरों में भी असेंबलीज होती थी
1: जी,
2: जिनके माध्यम से स्वशासन काफी हद तक चलता था, राजा कोई दिक्कत आए तो

0: वो लोग हस्तक्षेप करते थे, लेकिन काफी चीजें लोग अपने स्वशासन के स्तर पर निपटा लेते थे
1: जी।
0: तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज इन पट्टिकाओं से भी पता चलती है
1: जी। तो हमें पता चला कि सर्वधर्म संभाव जो है उस वक्त था, फिर सबका साथ सबका विकास जो हम आज सुन रहे हैं ये भावना उस समय भी थी, और स्वशासन आपने बताया कि लोग अपना शासन खुद चलाते थे, जैसे हम आज देखते हैं कि स्थानीय इकाइयां हैं, पंचायत है, फिर उसके बाद जिला स्तर पर है, तो ये हमें चोल वंश में भी देखने को मिलता है जी। ये रोचक बातचीत हम जारी रखेंगे। मैं आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ। कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप?
0: मेरी पसंद का तो देशभक्ति के कई गीत हैं, तो जो इसमें हमारी भारतीय संस्कृति झलकती है, तो आप है प्रीत जहाँ की रीत सदा ये सुनवा दें
1: जी।
2: जब

0: तो इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य के बारे में और अपने देश लौटी ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जो चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम में हमारे दो विशेषज्ञ हैं, देवेश विजय जी हैं, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और शोध कार्य से आप जुड़े हैं। इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की ही प्रोफेसर हैं मनीषा अग्निहोत्री जी। इतिहास की आप प्रोफेसर हैं, लिंग्विस्टिक से आप जुड़ी हैं और आज हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की विशेषताओं की। तो देवेश जी, अभी गाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे स्वशासन का, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्वशासन था इसमें जो हमारे समाज के अलग अलग अंग हैं, अगर हम महिलाओं का जिक्र करें, अगर हम हाशिए पर आए लोगों का जिक्र करें या किसानों का जिक्र करें, तो कैसी नीतियां मिलती हैं, क्या जानकारी हमारे पास है इनसे जुड़ी?
1: देखिए, चोल वंश के इंस्क्रिप्शंस भी हैं और ताम्र पट्टिकाएं भी हैं
0: जी,
1: और ये बहुत अच्छी मात्रा में है। नॉर्थ में हमें इतने नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ इन्वेजन ज्यादा हुए तो काफी नष्ट हो गए थे, लेकिन दक्षिण के छोर पर हमें ये काफी इंस्क्रिप्शन सर्वाइव कर गए हैं। उससे हमें उस समय के समाज का काफी अच्छा दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। इस समय कास्ट सिस्टम तो कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे यहाँ का जो सामंतवाद था, एक्चुअली वो यूरोपियन सामंतवाद की तरह नहीं था। यहाँ पर जोर जबरदस्ती और हिंसा मुख्य माध्यम नहीं था समाज में व्यवस्था बनाने का। इसीलिए हम पाते हैं कि यूरोप वगैरह में, यहाँ तक कि चीन में कृषक विद्रोहों की बड़ी परंपरा थी
0: जी,
1: यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा। एक बड़ी रोचक बात यह है कि बड़े विद्रोह कहीं नहीं हुए
0: जी,
1: हिंसा की जरूरत नहीं पड़ी। और इसीलिए शायद जो आर्मी भी थी, जैसे चोल वंश की आर्मी करीब 100,000 स्टैंडिंग आर्मी थी और करीब 100,000 उनके लेवीज यानी कि वो जो नायक वहां के जो सामंत होते नायक बोलते थे उनसे मंगवा सकते थे
0: जी।
1: ये इसकी तुलना करें जो बाद की सेना है, जैसे मुगल सेना थी करीब 6,00,000-8,00,000 की सेना थी, उसका लैंड रेवेन्यू से ही खर्चा चलता था
0: जी।
1: तो लैंड रेवेन्यू उस समय कहीं ज्यादा था। जो चोल वंश में हम देखते हैं ज्यादातर 1/4 से 1/6 तक कहा जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कि कितना लैंड रेवेन्यू जाएगा सरकार को। अक्सर होता है कि जितना केंद्र लेता है उतना ही करीब लोकल जमींदार वगैरह भी ले लेते हैं
0: जी।
1: तो उसको आप मान लीजिए बहुत से बहुत 40-50% किसान को देना पड़ता था, जबकि हिस्टोरियन नॉर्थ के बारे में बताते हैं 70-80% किसान से ले लिया जाता था रेवेन्यू। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी चोल वंश के समय में कि हिंसा कम करके ब्राह्मणों के माध्यम से समाज में एक आइडियोलॉजी को, और इसी के साथ भक्ति आंदोलन भी आ गया था
0: जी।
1: अलवर और नयनार इस समय दक्षिण के अंदर बहुत सफल एक वैष्णव और शैव भक्ति आंदोलन मना रहे थे, तो उससे कोई बड़े विद्रोह का कहीं उदाहरण नहीं है
0: जी।
1: आपने महिलाओं के लिए पूछा था, महिलाओं में भी हम देखते हैं ये तो था कि सुपीरियर मेल को माना जाता है, रिचुअल स्टेटस उसका ज्यादा है, लेकिन पर्दा नहीं था। और हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं इन इंस्क्रिप्शंस में कि कई जगह महिला गांव की प्रधान होती थी। इसके कुछ एग्जांपल्स मिले हैं
0: जी।
1: महिलाएं सेंट्स थी, वाद विवाद में भाग लेती थी
0: जी।
1: तो शिक्षा भी उनको इसका मतलब मिलती थी पूरी। और जो बाद में पर्दा वगैरह नॉर्थ में आ गया वो यहाँ नहीं था, ये एक बहुत अच्छी एक बात नजर आती है।
0: तो कुल मिलाकर समाज के जो सभी तबके हैं उनके कल्याण के लिए साम्राज्य में कार्य किया जाता था जी, समरसता ज्यादा थी। मनीषा जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे पास इस तरह के तथ्य प्राप्त होते हैं कि जो चोल साम्राज्य के पास अपने समय के सबसे शक्तिशाली नौसेना थी और उस समय भी दक्षिण पूर्व एशिया तक बिजनेस होता था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं चाहूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें बताएं।
2: चोल जो साम्राज्य था उसके पास बहुत ही स्ट्रांग नेवी थी और उस नेवी के बलबूते पर हम देखते हैं कि जो राज राज चोल थे उन्होंने जो है काफी अपने क्षेत्र का विस्तार किया। श्रीलंका, मालदीव्स, इन क्षेत्रों को वो अपने जो है तहत लेकर आए। और उसके बाद जो है राजेंद्र चोल जो हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने जो है शैलेंद्र जो शासक थे उन पर आक्रमण किया। इनफैक्ट जो है ये कहा जाता है कि इतनी अच्छी उनकी नेवी थी चोल शासकों की कि उन्होंने जो ये बंगाल की खाड़ी है उसको एक चोलों की झील के तौर पर उसको परिवर्तित कर दिया। इतने शक्ति

शक्तिशाली इनका जो है नेवी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो राजेंद्र चोल जो हैं वो अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ जो है दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचे, और शैलेंद्र जो वहां के शासक थे, जो कि बहुत ज्यादा व्यापारिक जो संबंध थे यहाँ से तमिल जो गिल्ड्स के साथ, यहाँ पे श्रेणियां जो यहाँ पे मौजूद थी जैसे कि अय्यावोल जो श्रेणी थी, उसके अलावा यहाँ पे नाना देसी नाम की जो श्रेणी थी, मणिग्रामम नाम की जो श्रेणियां थी, ये श्रेणियां यहाँ पर मौजूद थी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और वो अपने व्यापार में जो है लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे शैलेंद्र जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाने शुरू किए थे, परेशान करना शुरू किया था तमिल शासकों को, और

0: अनादेसी नाम की जो श्रेणी थी, मनीग्रामम नाम की जो श्रेणियां थी, ये श्रेणियां यहाँ पर मौजूद थी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और वो अपने व्यापार में जो है लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे शैलेंद्र जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाने शुरू किए थे, परेशान करना शुरू किया था तमिल शासकों को और तमिल जो व्यापारी हैं और उनको जो है उन्होंने परेशान करना शुरू किया, क्योंकि जो चोल साम्राज्य है उसका जो व्यापारिक संबंध है वो सीधा जो है चीन के साथ स्थापित हो रहा था। ये बात भी उनको नागवार गुजरी और इसलिए जो है वो कुछ तरीके के पाबंदियां लगा रहे थे, जैसे कि अपने जो डॉक्स हैं वहां पे पायरेट्स को जो है अपॉइंट कर दिया जाता था उनके द्वारा, कि जिससे समुद्री जो लुटेरे हैं कि वो उनके माल को लूटें और उनको परेशान करें। तो ये जो श्रेणियां थी बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे बड़ी बात ये जो मनीग्रामम, नाना देसी, अय्या वोल, ये जो श्रेणियां थी ये हम देखते हैं ये चोल जो सम्राट हैं, शासक हैं, उनको पैसा भी उधार दिया करती थी, मनी लेंड किया करती थी। तो इसलिए जो है हम देखते हैं इसकी वजह से, और उसके अलावा जो राजेंद्र चोल की जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, दिग्विजय की जो उनकी नीति थी, उसके तहत उन्होंने अपनी इस नेवी, इस मजबूत नेवी के साथ जो है साउथ ईस्ट एशिया पर आक्रमण किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पूरा उनको उन्होंने पराजित कर दिया पर उसको एनेक्स नहीं किया, उसको अपने साम्राज्य में उन्होंने शामिल नहीं किया। उन्होंने केवल क्या किया, अपने जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों के लिए वहां से कुछ जो है बेनिफिट्स लिए और यही नहीं किया, बल्कि उन्होंने वहां पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी एस्टेब्लिश किए। राजेंद्र चोल ने जो है शैलेंद्र जो थे एक शासक उस समय के, उनकी पुत्री के साथ विवाह किया और ये विवाह किसी पीस ट्रीटी का जो है नतीजा नहीं थी, वो सिर्फ जो है उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा वातावरण अपने व्यापारियों को देने के लिए कि एक उनका
1: संबंधों का विस्तार
0: करने के लिए उन्होंने उसको वहां पर किया। हम देखते हैं कि अगर ये नेवी अगर नहीं होती, इतनी पावरफुल नेवी नहीं होती, तो ये ऐसा करना और जो है साउथ ईस्ट एशिया तक जाकर जो है किसी को पराजित करना बड़ा मुश्किल होता। और नेवी के साथ एक चीज हम और देखेंगे कि यहाँ पर नेवी के साथ साथ ये जरूर है कि कार्टोग्राफी इनकी बहुत अच्छी होगी। मैप्स, बिना मैप्स के आप किस तरीके से किस दिशा में आपको जाना है, तो हिंदुस्तान का मैप और आपका जो दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसका मैप की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो कार्टोग्राफी बहुत अच्छी रही होगी यहाँ पर। और दूसरी चीज एस्ट्रोनॉमी, खगोल विद्या जो है होना वो बहुत जरूरी है अगर आप समुद्री यात्रा कर रहे हैं, समुद्री व्यापार पर जा रहे हैं। किस समय जाया जाए, तो हम देखते हैं कि ये जो है मॉनसून जो विंड्स होती थी उसका प्रयोग करते थे। तो मॉनसून विंड्स जब चलती थी उस दौरान जो है उन हवाओं के माध्यम से उसका इस्तेमाल करते हुए जब तब ये पूर्व की तरफ जो है जाते थे और जब सीजन का बदलाव होता था तो इनकी रवानगी होती थी।
1: तो यानी वो हवाओं की दिशाएं जो है नाव को आगे बढ़ाती रहे, जहाजों को आगे बढ़ाती रहे। बहुत ही रोचक बात ये आपने बताई। और हम ये भी देखते हैं कि आज भी हमारी नौसैन्य कमान जो है देश में अलग अलग स्थान पर, वहां हम राजराजा चोल की प्रतिमा देखते हैं, तो इतिहास का वो सूत्र हमारी आधुनिक नौसेना से भी जुड़ता है। हम जब देश में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम उस समय से यानी अपने इतिहास से भी ये शिक्षा लेते हैं। तो इसी मोड़ पर आपकी पसंद का एक गीत मनीषा जी,
0: क्योंकि हम लोग चोलों की बात कर रहे हैं, चोल शासकों की बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में मुझे एक पिक्चर ध्यान आ रही है, एक मूवी जिसको मणि रत्नम साहब ने डायरेक्ट की है और इसका नाम है पोनिन सेल्वन। चोल जो राजा थे, राजराज चोल, उनके जीवन से इंस्पायर्ड है। तो उस मूवी का यदि कोई सॉन्ग, अगर कोई गाना जो है अपने ऑडियंस को सुना सकें तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होगा।
1: जी बिल्कुल जी।

0: तो इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में और इस गाने ने हमें झलक दी चोल साम्राज्य की। कार्यक्रम में हमारे दो विशेषज्ञ हैं मनीषा अग्निहोत्री और देवेश विजय और आज हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की, साथ ही चोल साम्राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी बात कर रहे हैं, ताम्र पट्टिकाओं की बात हो रही है। अब एक और महत्वपूर्ण जो वस्तु है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी देवेश जी आपसे। कुछ समय पहले जब हमारे नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ उस समय सेंगोल के बारे में जाना, तो सेंगोल भी चोल साम्राज्य से जुड़ा है, मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप हमें कुछ बताएं।
1: ये बहुत अच्छी पहल रही हमारे गवर्नमेंट की, जिसको बहुत शुभ माना जाता है और पार्लियामेंट का भी, क्योंकि नया भवन का निर्माण हुआ है उसमें इसको स्थापित करके एक आकृष्ट भी किया गया कि इस महान जो दक्षिण भारतीय परंपरा की ओर ध्यान जाए सब लोगों का, तो ये एक बहुत ही शुभ चीज कदम उठाया गया। पर मैं यहाँ पर ना एक श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब हम पट्टिकाएं या इंस्क्रिप्शंस कुछ भी देखते हैं जो इतिहास के स्रोत होते हैं तो हमें खाली ध्यान इस पर नहीं देना चाहिए कि मेंशन क्या किया गया है, बल्कि ये भी कि एब्सेंट क्या
0: जी।
1: अब मैं एक बहुत अच्छी चीज चोल वंश की जो एब्सेंट है, सोर्सेज में मेंशन नहीं आता है, पर हम कंपेयर करके समझते कि भाई उत्तर में ऐसा हो रहा था
0: जी,
1: यहाँ पे है ही नहीं। उत्तर में जौहर हो रहे थे, उत्तर में स्लेव मार्केट्स लग रही थी, हिंसा ब्रूटल बैटल्स तो दक्षिण में भी होती थी, लेकिन किस सहजता से दक्षिण पूर्वी एशिया में हमारी संस्कृति पहुंच गई, उसमें कोई ज्यादा हिंसा नहीं हुई
0: जी।
1: तो ये एक कंट्रास्ट है, जौहर जैसी चीज कभी नहीं हुई क्योंकि इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता था जीतने के बाद। ये एब्सेंट जो चीजें हैं वो भी हमें नोट करनी चाहिए।
0: तो मैं मनीषा जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, स्थापत्य कला की अगर हम बात करें, अगर हम कला संस्कृति की बात करें, तो वो उस समय कैसी थी चोल साम्राज्य के समय?
2: मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक तरीके से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल चोल वंश में किया गया
0: जी।
2: स्थापत्य कला में जो है उसका बहुत ही बखूबी उसका इस्तेमाल किया गया
0: जी।
2: मैं एक एग्जांपल लूंगी यहाँ पर, तंजौर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है
0: जी,
2: जिसका एक्चुअल नाम जो है, वास्तविक नाम जो है राजराजेश्वर मंदिर है, और ये बाद में बृहदेश्वर मंदिर जो है मराठों के समय में इसका नाम रखा गया
0: जी,
2: जो कि बेसिकली शैवाइट मंदिर है, शिव का लिंग जो है यहाँ पे स्थापित है। तो यदि आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देखें, बृहदेश्वर मंदिर को, मैं अभी हाल में होकर आई और मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी उस मंदिर को देखकर, क्योंकि उत्तर भारत में हमें इस तरीके का कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिलता है उसकी तुलना का। तो उसमें सबसे रुचिकर बात जो यहाँ पे जो स्थापत्य कला की है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मंदिर के बारे में डॉक्यूमेंटेशन मंदिर के अंदर ही किया गया है। इसके अंदर पूरी अगर आप दीवारें देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर की, उस पे सब पे अभिलेख लिखा गया है
0: जी,
2: इंस्क्रिप्शंस है, और उसमें जो है अभिलेख के अंदर वहां पे रोज के रोज किस तरीके से कार्यभार मंदिर का चलाया जाता है
0: जी,
2: उसके बारे में सारी सूचना दी गई है, किस तरीके से

0: प्रशासकीय कार्य होते हैं, कौन कौन एम्प्लॉयर्स हैं, म्यूजिशियंस कौन से हैं, गणिकाएं हैं तो कौन है, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो है इस मंदिर के अंदर जितनी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों का बारीकी से डिटेल मिलता है, उसका आकार क्या है, क्या वेट है, उसका एक एक डिटेल जो है मूर्तियों का उसके अंदर उल्लेख उसका किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही थी, आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो बहुत बड़े गोपुरम मिलते हैं, दो गोपुरम गेट्स जो होते हैं, बहुत ही भव्य जो है द्वार इसके बने हुए हैं। और उसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो भव्य द्वार बने गए हैं, ये जो है इसमें मोर्टर का प्रयोग नहीं किया गया है। टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो इसमें सीमेंट लाइन ये जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसको इंटरलॉकिंग जो पद्धति है उसके द्वारा इतने बड़े ऊंचे द्वार जो है ये खड़े किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप मंदिर का विमान देखें, जो गर्भगृह के ऊपर जो विमान है उसको अगर देखें, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर दो नंदी जो बुल्स हैं वो बैठाई गई हैं, और उसके साथ साथ जो है कलश भी हैं जो कि बहुत हैवी हैं, और जो कि 80 टन का जो ग्रेनाइट है उसको उसके ऊपर टिका के रखा गया है। तो 80 टन का ग्रेनाइट बहुत भारी ग्रेनाइट है जिसको बैलेंस करके उसको लगाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, और ग्रेनाइट जो है वो बहुत हैवी ग्रेनाइट्स हैं, और ये ग्रेनाइट जो लाए जाते थे वो 65 किलोमीटर दूर जगह से लाए गए थे, इरूर नाम की जगह है, वहां से उसको लेके आया गया। और ये जो ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट एक ऐसी क्वालिटी के ग्रेनाइट है जो कि जो रॉक्स हैं, रॉक्स की मन जो है मिट्टी के अंदर जाने के बाद, बहुत डीप में जाने के बाद जो है वो उस तरीके की जो है ग्रेनाइट बन के निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्वेरिंग में कितना मुश्किल रहा होगा जितने भारी भारी ग्रेनाइट को निकालना, फिर उस ग्रेनाइट को 65 किलोमीटर लोड करके लाना, उसको अनलोड करना, और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन में उसका इस्तेमाल करना। तो कोई अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई होगी तभी ये हो रहा होगा। और उसके लिए यहाँ पे इस तरीके की सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी जो है कहीं ना कहीं शिक्षा दी जा रही होगी, इस तरीके के इंजीनियर्स जो है वो तैयार किए जा रहे होंगे। एक और जो बात मैं प्रौद्योगिकी के कंटेक्स में जो बोलना चाहूंगी बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, यहाँ पे 2010 में ASI ने एक मंदिर के साथ ही जो है एक होल किया था। होल करने पे उनको वहां पे सैंड मिला, और उसके बाद ही पता चला कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सैंड बॉक्स के ऊपर टिका हुआ है। सैंड बॉक्स किस लिए? क्योंकि ये सैंड बॉक्स जो है वो अर्थक्वेक को रोकने का काम रेजिस्टेंट है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ये जो सैंड बॉक्स है। तो आप सोचिए कि उस समय इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए
1: दूरदर्शिता रही होगी,
0: तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर हमें उसका एग्जांपल देखने को मिलता है। उसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर की यदि मैं बात करूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो शिवलिंग है पूरा बहुत बड़ा शिवलिंग है, दो स्टोरी जो बिल्डिंग है उसके अंदर वो शिवलिंग पूरा फिट कर होता है। नंदी बुल जो है वो एक ही ग्रेनाइट से बनाई गई है, वो है वहां पर
1: जी।
0: उसके अलावा आप देखेंगे जो वहां पर अंदर जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा है वहां पे, लेकिन आपको उसमें फ्रेस्कोस मिलेंगे उनकी वॉल्स पे, पूरा जो है आपको डांसिंग गर्ल्स और उस तरीके की जो है पेंटिंग्स जो है आपको देखने को मिलती है। और ये मंदिर हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ लाइब्रेरीज होती थी, यहाँ पे जितने भी तमिल आपके जो टेम्पल्स हैं वहां पर मैन्युस्क्रिप्ट को रखा जाता था, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको संजोया जाता था लाइब्रेरी में। और ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये शिक्षा के केंद्र भी थे, यहाँ से शिक्षा जो है वो दी जाती थी, खासकर जो धर्म से संबंधित जो शिक्षा है, वेद है, पुराण है, आगम टेक्स्ट है, ये सब वो पढ़ाया जाता था। और उसके बाद जिसको फर्दर जो है कुछ अगर अपनी शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके लिए एडवांस्ड जो है एजुकेशनल सेंटर्स होते थे जिनको मर्चेंट सपोर्ट करते थे, रॉयल फैमिली सपोर्ट किया करती थी और मंदिर सपोर्ट किया करते थे।
1: यानी हम एक तरह से देखें तो मंदिर शिक्षा के केंद्र थे, और हमने ऐसा सुना है कि हर मंदिर के प्रांगण के आसपास चिकित्सालय भी उस समय होते थे, मंगल कार्य वहां पर होते थे, वैवाहिक कार्य होते हैं वो होते थे, तो सामाजिक कार्यों के लिए भी मंदिर के प्रांगण का
2: लोन भी
1: जी, जी और स्कॉलरशिप और लोन भी दिया जाता था मंदिर के से ही जी। तो इतनी जानकारी हमें मिलती है चोल साम्राज्य के बारे में, और मंदिर के बारे में आपने हमें इतना कुछ बताया। यहाँ पर आपकी पसंद का एक गाना,
0: मेरी फरमाइश जो है इस समय है ये हमारा

0: गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम चोल साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख हुआ है जो अपने देश आई हैं और इनकी क्या विशेषता है ये हमने जाना है हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से। देवेश विजय जी सेवानिवृत्त प्रोफेसर इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मनीषा अग्निहोत्री जी हैं हमारे साथ। मनीषा जी, हम गाने से पहले बात कर रहे थे मंदिर की और उसकी विशेषताओं की। नटराज की जो एक मूर्ति है, कहा जाता है कि चोल साम्राज्य से जुड़ी है और ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और मैं कहूंगी कि कलाकार तो विशेष रूप से इससे जुड़ते हैं। आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं।
1: ये जो मूर्ति है, एक तो यहाँ पर क्या था कि ये एक तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है, उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया। मैं ये अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी ये टेक्निक क्या होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो बी वैक्स जो होता है उसको जो है एक तरीके का जो कपूर होता है कैम्फर, उसको तेल में उसको गूंद कर उससे एक सांचा बनाया जाता था
0: जी।
1: और उस सांचे में फिर जो है मिट्टी का लेप लगाया जाता था, और उस मिट्टी का लेप लगाने के बाद उसको जो है भट्टी में जो है उसको पकाया जाता था। भट्टी में पकाने के बाद जो है वो जो वैक्स होता था वो तो पिघल के हट जाता था, और जो क्ले का जो सांचा था वो निकल कर आता था। और उसके बाद जो ब्रॉन्ज की जो स्कल्पचर्स बनाई गई या मूर्तियां बनाई गई, उसका जो धातु है, और ये धातु जो है वो पंच धातु होते थे जिसमें कि ब्रॉन्ज कॉपर लेड ये सारा जो है मिलाकर जो है इसको बनाया जाता था पंच धातुओं को। तो उसको फिर मेल्ट करके जो है उस सांचे के अंदर डाल दिया जाता था, और जब वो सांचा उसमें सेट हो जाता था, सूख जाता था, तो उस सांचे को तोड़ दिया जाता था जब वो धातु जो है सेट हो जाता था। तो इस प्रकार से एक सांचा जो है वो केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता था, उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता था। तो हमारे पास बहुत बेहतरीन जो है इस टेक्निक के द्वारा जो है निर्मित हमारे पास बहुत सी ब्रॉन्ज की जो है हमारे पास मूर्तियां
0: जी है। क्या आज भी हमारे पास है मंदिरों के अतिरिक्त?
1: मंदिरों के अतिरिक्त हमारे पास म्यूजियम्स में है, म्यूजियम में बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो म्यूजियम
2: विदेशी म्यूजियम्स में भी है
0: जी।
2: नटराज बहुत सेलिब्रेटेड पीस ऑफ आर्ट माना जाता है
0: जी। इस रोचक बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, आइए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। देवी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारे संग्रहालय हैं, वो क्या भूमिका निभाते हैं इतिहास को भविष्य से जोड़ने में?
1: इससे पहले मैं प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक बात कहना चाहूंगा, जो कि बड़ा सकारात्मक उपयोग चोल वंश ने किया, इरिगेशन। हमारे साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा जो समस्या रही है, मॉनसून का फेलियर और उसके साथ आने वाले फेमींस में लाखों लोगों का मरना। उसके लिए चोल वंश ने खास तौर पर न केवल टैंक्स बड़े स्तर पर बनवाए जिनमें पानी इकट्ठा रखा जा सके, डैम्स का भी कंस्ट्रक्शन, कावेरी पर कैनाल्स में डाइवर्ट करने के लिए पानी को ये शुरू किया। ये चोल वंश का, क्योंकि राजा ठीक है टैक्स ले रहा है अपने शौर्य के लिए, अपने वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या दे रहा है
0: जी?
1: ये बहुत वेलफेयर पॉलिसी क्या है, ये कंपेयर किया जाना चाहिए। ये सारे बड़े बड़े साम्राज्यों ने नहीं किया, लेकिन चोल वंश का ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था
0: जी।
1: और एक और इसी तरह से हमें उनकी इंस्क्रिप्शंस और इन ताम्र पट्टिकाओं में मिलता है टैक्स रिलीफ। ड्राउट्स का मेंशन आया है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं आया। फॉरेन ट्रेवलर्स भी कई आए, चीन से भी आए, जो दक्षिण में भी आए थे, कई अरब ट्रेवलर्स आए, लेकिन किसी ने भी ऐसा मेंशन नहीं किया है जैसा शाहजहां के टाइम में करोड़ों लोग मर गए थे जब दक्कन में अकाल पड़ा
0: जी।
1: अंग्रेजों के टाइम में कितने करोड़ों लोग मर जाते थे
0: जी,
1: लेकिन चोल वंश में ऐसा नहीं हुआ। उसमें दो ये चीजें थी, एक तो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी का यूज
0: जी, और कावेरी नदी पर बांध जो है आज भी जानते हैं उसके बारे में लोग जी,
1: और कनाल सिस्टम अभी तक है, और टैक्स रिलीफ।
0: पोनगेरी जलाशय उनको कहा जाता था
1: जी,
0: जी जो करते थे, सिंचाई व्यवस्था
1: बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान था।
0: तो आपने बताया कि सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और दूसरा मुश्किल के समय लोगों को कर से छूट दी जाती थी, और जो कार्य हैं वो किए जाते थे उनकी भलाई के लिए जी।
1: और एक और चीज बड़ी अच्छी थी स्थानीय स्तर पर, वो है कि जो न्याय व्यवस्था थी वो भी काफी हद तक स्वशासन का हिस्सा थी
0: जी।
1: और कहीं भी हमें उल्लेख नहीं मिलता कि फोर्स का बहुत ज्यादा, कहीं प्रिजंस नहीं थे, खाली ऑस्ट्रेसिज्म कहते हैं, ऑस्ट्रेसिज्म से
0: जी
1: व्यवस्था बरकरार रख ली जाती थी
0: जी।
1: ये बड़ा ही पॉजिटिव पहलू था
0: जी। तो हम संग्रहालयों का उल्लेख करते हैं, हमारे युवा साथी अगर इस बारे में ज्यादा जानना चाहें तो ऐसे में उनके पास क्या क्या माध्यम है?
1: देखिए, पुस्तकों के अलावा और पॉडकास्ट के अलावा और आपके प्रोग्राम के अलावा उन्हें जरूर म्यूजियम जाना चाहिए, और जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जरूर विजिट करना चाहिए।

0: क्योंकि प्रत्यक्ष देख कर कि मोहनजोदड़ो में ये व्यवस्था थी ड्रेनेज की, या जो आप नालंदा के बीच में खड़े होकर सांझ के समय जो महसूस करेंगे, वो केवल पुस्तकों से या आर्टिकल्स को पढ़ के नहीं आ सकता। तो इन सब का जरूर विजिट करना चाहिए युवाओं को, और ग्रुप बना के जाना चाहिए। उसमें जो चर्चाएं होती हैं, जो आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, वो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है।
1: जी, यानी प्रधानमंत्री जी ने तो हमेशा प्रेरित किया ही है कि पर्यटन भी सुचारू रूप से चले, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। और पर्यटन के दौरान हम जो सीखते हैं, कई बार वो हमें किताबों में नहीं मिलता, व्यावहारिक ज्ञान अलग होता है। जी, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने चोल साम्राज्य के बारे में जो जाना है, समझा है, उसे हम और गहन अध्ययन का हिस्सा बनाएंगे, और हम संग्रहालयों की यात्रा भी करेंगे, हम दौरा करेंगे ऐसी जगह का जहां से हमें अपने ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में और जानने समझने को मिले, और हमारे पर्यटन में भी हम ऐसी जगह जरूर जाएंगे जो हमें बताती हो हमारी संस्कृति के बारे में, और हमारे जो अलग अलग साम्राज्य रहे हैं उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। तो देश काल परिस्थिति को अगर हम समझना चाहें तो ये भी हमें जानना होगा कि इतिहास हमेशा देश काल परिस्थिति के बारे में अलग अलग तरीके से बताता है, और उससे बहुत कुछ सीखकर हम भविष्य की वो डोर थाम सकते हैं जो हमें हमारी जगह पुख्ता रखने में मदद करेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत मानचित्र पर सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक पूरी सभ्यता है, एक पूरी संस्कृति है, जिसने सदियों तक दूसरे देशों को प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। तो इसी मोड़ पर मैं अपने विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश विजय जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा अग्निहोत्री जी आपका।
2: थैंक यू नीलम जी।
1: तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

जी हाँ, प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच एक वारी फिर तो तुहाडा स्वागत है। ते देखो जी, बापू जड़े ने ना वो सेहत लई हानिकारक नहीं हुंदे, वो सेहत लई बहुत वधिया हुंदे ने। इस करके उन्हां दी कदर करनी है, कदी उन्हां दे कोल बैठना भी है थोड़ी देर वास्ते, उन्हां दी सेहत दा ध्यान रखना है, पुछ लैणा है कदी कदी किसी चीज़ दी जरूरत तां नहीं। वैसे कदी पापा कहिंदे नहीं कि मैनूं इस चीज़ दी जरूरत है, वो जरूरत सानूं आप समझनी चाहीदी है ते उस जरूरत नूं असीं आप पूरा कर दईए तां बहुत वधिया। ते कदी कदी पापा नूं घुमाण वी लै जाया करो फिर बाइक दे उत्ते या गड्डी दे विच इक गेड़ी दवान वास्ते, उन्हां दा भी मन होर हो जांदा है। ये सारियां चीज़ां सानू करनियां चाहीदियां ने, उहदे वास्ते सानू फादर्स डे दी वेट नहीं करनी चाहीदी मैनू लगदा है। खैर, फिलहाल पिता जड़े ने ओह घर दी इक नींह ने, ते इस करके नींह दा मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस करके थोड़ा जिहा टाइम अपने पापा दे नाल भी तुसीं स्पेंड करो। अच्छा, अज है 21 जून, तो हुण जून जड़ा है ना वह एंड वल जा रहा है, तो ये नाल ही अगले महीने मतलब कि जुलाई जदों चढ़ना है, तो मॉनसून सीजन जड़ा है वह बस हुण साढ़े दरवाजे ते आके खड़ा है। तो इस टाइम के उत्ते मॉनसून के विच ना बहुत सारिया चीज़ा जड़ियाँ होंदियां ने ना, वो तुहानू भी पता है जड़ियाँ मेन प्रॉब्लम्स होंदियां ने घरां दे विच की हुंदा है, मच्छर, मक्खियाँ, इनफेक्शन्स, अलग अलग तरह दी स्किन एलर्जीज हुंदियां ने, फिर उस तो बाद कीड़े मकौड़े अलग अलग तरह के घर दे विच बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पर एक चीज़ मैं तुहानूं इत्थे दसना चाहवांगी, कहिंदे कि ये जिहड़ियां चीज़ां जे साडे घरां विच ज़्यादा ने ना, जिदा कि मच्छर ज़्यादा ने, कॉकरोच ज़्यादा ने या कीड़े मकौड़े ज़्यादा ने, यह इंडीकेटर हुंदा है कि साडे घर दे किहड़े किहड़े कोने नूं सफाई की जरूरत है। जी हाँ, जे घर दे विच मच्छर ज़्यादा ने तो दैट मीनस कि सीलन ज़्यादा है, साडे घर दे विच क्लटर ज़्यादा है, मतलब कि असी बिना मतलब दा कबाड़ कट्ठा करके अपने घर दे विच रखिया होया है। जे साडे किचन विच कॉकरोचिज़ ज़्यादा ने ना, तो इहदा मतलब यह है कि साडी किचन नू इस टाइम सफाई की बहुत जरूरत है, फालतू का समान निकलन की जरूरत है, तो किचन नू हवा लगन की जरूरत है। तो नाल जिथे चींटियां होन उत्थे समझ लो कि मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा, तो उत्थे भी किसी ना किसी तरह के सानू कोई ना कोई सोल्यूशन लाने की जरूरत है, करन की जरूरत है। तो सानू कई बार इदा लगता है कि पेस्ट कंट्रोल जड़ा हुंदा, जिदा कई लोग करा देंदे ने कि ही बेस्ट सोल्यूशन है, शायद पेस्ट कंट्रोल असी करा लिए तो प्रॉब्लम्स का हल निकल जाता है, पर सारे जने पेस्ट कंट्रोल नहीं करा सकते।

प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। जी हाँ, प्यार दा जड़ा तोहफा है ना, वो सच्ची किसी दी जिंदगी बन जाता है। पर प्यार जड़ा है वो किसी दे वस च नहीं है, वो कदी भी हो सकता है, किसी भी वेले किसी भी उम्र दे विच हो सकता है। ते किसी दा साथ जड़ा है ना, वो साडी

बाप का अमीर होना या गरीब होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। प्रोग्राम तुम इंजॉय कर रहे हो, दिलाज शायर है अपनी दोस्त होस्ट आर जे रिया दे नाल। ते आज फादर्स डे है। फादर्स डे मतलब शुक्र है कि असी अपने पिता नू याद करन दे लिए एक दिन ते रखिया है, क्योंकि असी किते ना उन्हां दे एफर्ट्स नू उन्हां दे प्यार नू असी कदर ही नहीं पाते उन्हां दी। देखना बहुत ही सोहनी कविता है जो मैं उन्हां लई पेश करन जा रही हाँ सारे फादर्स दे लई, कि पिता अगर फूल होते तो होते गेंदा, पिता अगर फूल होते तो होते गेंदा, गेंदा कभी गुलदस्ते में नहीं रखा जाता, मैं धागों में पिरोकर बांध दिया जाता है, किसी के गले में, किसी तस्वीर पर या किसी दहलीज के आर पार, पिता भी बांधे जाते हैं अपेक्षाओं में, जिम्मेदारियों में, और बीतता है उनका जीवन दहलीज के आर पार। होती है सजावट गुलाबों और गुलबहारों से, गेंदा बस काम आता है, वो काम आता है एक समान उत्सव और शोक में, जैसे पिता हर आने वाले से पूछ लेते हैं चाय पानी, शादियों और जनाजों में। मंदिर की सीढ़ियों पर माँ ने हमेशा गेंदा ही चढ़ाया, ठीक नहीं लगता खूबसूरत गुलाबों को तोड़ना, गेंदा ही जा सकता था हमारी प्रार्थनाओं के लिए अपने पौधों से टूटकर। गेंदे नहीं मांगते बढ़ने के लिए छांव और प्रेम का स्पर्श, वो बस बढ़ जाते हैं कर्तव्य निष्ठ होकर, कि कल को बंधना होगा धागों में, चढ़ना होगा मंदिरों में, और बनना होगा काम आ जाने वाला व्यवहार जो काम के बाद सहेजा नहीं जाता, जैसे पिता। गेंदे कभी सूखते नहीं दिखते पर सूख जाते हैं धीरे धीरे काम आते हुए चुपचाप, जैसे पिता। सो जे तुहाडे फादर अजे भी तुहाडे कोल ने, तुसीं उहनां नाल गलबात कर सकते हो, ते अज उहनां नूं जरूर तुसीं हैप्पी फादर्स डे विश करो, ते उहनां नूं अहसास दिलाओ कि तुसीं किन्ने शुक्रगुजार हो उहनां दी मौजूदगी लई अपनी जिंदगी दे विच, क्योंकि शायद ये मौका हर किसी कोल नहीं हुंदा। सो तुसीं भी इस महफिल दे विच जुड़ सकते हो, अपने पिता दे लई कोई भी शेर ओ शायरी तुसीं साडे नाल सांझी कर सकते हो साडे व्हाट्सएप नंबर ते, जो कि हैगा है जी 9855-1027। बहुत ही प्यारी जी गज़ल मिताली सिंह होरां दे लई, मिताली सिंह होरां दी आवाज़ विच तुहाडे लई पेश कर रही हूँ।

चार दिन भी कोई दूसरा नहीं निभा सकता, चार दिन भी कोई दूसरा नहीं निभा सकता जो किरदार एक बाप पूरी जिंदगी निभाता है। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो दिल आज शायर अपनी दोस्त होस्ट आरजी रिया दे नाल। ते अज आप गलबात करदे हाँ कर रहे हाँ फादर्स की, क्योंकि अज फादर्स डे है। असी पिता के जिहड़े सैक्रीफाइसिस ने, जिहड़ा प्यार है, जिहड़े उन्होंने अपनी इमोशनस ने, उन्होंने अज सैलीब्रेट कर रहे हैं। तो एक ना बड़ी सोहनी कविता है पिता ते लिखते हैं कि बेटी की आड़ी तिरछी चोटी भी बांध देते हैं, कभी उसके लिए जली रोटी भी

बना देते हैं। कई बार कापी पर कवर भी चढ़ा देते हैं, स्कूल का होमवर्क भी करवा देते हैं। बिना पत्नी के पुरुष पति नहीं हो पाते, पर पिता होते हुए वो माँ जरूर हो जाते हैं। जैसे जैसे पितृसत्ता आगे बढ़ती जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी पिता अब थोड़े थोड़े माँ होते जा रहे हैं। ते वैसे इस गल सच भी है कि जिहड़े अजकल दे जिहड़े फादर्स हैगे ने, मैं देखिया भी है साडी फैमिली दे विच या फिर फ्रेंड्स दे विच भी, कि अजकल दे जिहड़े फादर्स ने उन्हां च ना किते मावां वाले इमोशंस जिहड़े हैगे ने ओह जरूर हुंदे ने, कि उन्हां नूं वी उन्ना ही ध्यान उन्ना ही प्यार हुंदा है अपने बच्चे दे लई। ते मैनूं लगदा है कि जिहड़े अज तों अज दे समें दे नहीं पुराने जिहड़े समें दे जिहड़े फादर्स सीगे, उन्हां दे मनां विच वी उन्हां दे दिलां विच वी अपने बच्चिआं दे लई इन्ना ही प्यार इन्ना ही गूढ़ सीगा। पर फर्क उहनूं सिर्फ इन्ना सीगा कि हुण साडे कोल इन्नियां सारियां फैसिलिटीज़ हैगीआं ने, इन्नी सारी अवेयरनैस हैगी है। उस टाइम ते शायद साडे कोल इन्नियां फैसिलिटीज़ नहीं सीगीआं, इन्ना समां ही नहीं सी हुंदा अपनी फैमिली नूं देण वास्ते।

मोहब्बत में हिसाब नहीं होता, मोहब्बत में हिसाब नहीं होता, बस बेपनाह चाहत का ख्वाब होता है। तुम मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, तुम मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर तुझे चाहना मेरा इंतखाब होता है। प्रोग्राम तुम इंजॉय कर रहे हो दिलाज शायर अपनी दोस्त होस्ट आरजे रिया दे नाल। महफिल सजी हुई है, इस महफिल में तुम भी शामिल हो सकते हैं। किमें हो सकते हैं भी थम दस दिन या साड़ा व्हाट्सएप नंबर है गए जी 9855101027। तो एक बहुत ही सोहनी शायर शायरी रूपकमल होना ने साडे नाल सांझी कीती है, लिखते हैं कि

चांद से चेहरे पर जब जुल्फें बिखर जाती हैं तो रात भी शर्म से नजरें झुका लेती हैं। तेरे दीदार की तलत कुछ ऐसी होती है कि दुआओं में भी तेरा ही जिक्र होता है। बहुत ही सोहनी तुसीं साडे नाल शायरी जिहड़ी हैगी है सांझी कीती है ते इन्हां लफ्ज़ां ते ही हरिहरन होरां दी आवाज़ दे विच एक बहुत ही प्यारी जी गज़ल तुहाडे लई पेश कर रही हां। सो प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रहे हो अपनी दोस्त ते होस्ट आरजीरिया दे नाल। दिल आज शायर है ते जिहड़ी महफिल आ ओह इदां ही सजी हुई है ते तुसीं इस महफिल दा हिस्सा किवें बनना है वी तुहानूं दस दिंदी हां। ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ 9855-10-10-27 9855-10-10-27। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: एक जरूरी सूचना, असी आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल 102.7 MHz तो बोल रहे हैं। ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड विखे ICC वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप तहत भारत ते दक्षिणी अफ्रीका दियां महिला टीमां विचकार खेडे जाण वाले T20 क्रिकेट मैच दी ऑफ ट्यूब कमेंट्री अपने दिल्ली केंद्र तों शाम साढ़े छे बजे तो सुनावांगे, पर FM रेनबो दे प्रोग्राम तुसी FM रेनबो जलंधर ऐप तों सुनते रहोंगे।
1: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो डॉक्टर के इस बेहद खास एपिसोड में। जी हाँ, स्पेशल ऑन इंटरनेशनल योगा डे। दोस्तों, सुबह से योग दिवस की शुभेच्छाओं और शुभकामनाओं का तांता तो लगा ही होगा, लेकिन हमें भी अवसर मिला है इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक एक बार फिर से योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं पहुंचाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग

0: दिवस की। चलिए मिलते हैं योगाचार्य डॉक्टर शालू गुप्ता से जो आज हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शालू गुप्ता, और आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, धन्यवाद। योगा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और ये बहुत ही बड़ा विषय है। मैं ये कहना चाहूंगी कि 21 जून का यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भी यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का उचित समय है। तो 21 जून का जो दिन रखा गया है, यह बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है, और हम आज योग दिवस के अवसर पर बहुत सी चीजें सीखेंगे और समझेंगे, और ये जानेंगे कि योग का सही अर्थ क्या है।
0: तो डॉक्टर गुप्ता, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए योग कितना आवश्यक है, ये अब हम सभी कुछ को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, लेकिन थोड़ा बेहतर जानेंगे योगाचार्य शालू गुप्ता से, आपसे। तो आज का जैसा कि टॉपिक है योग फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए योग।
1: देखिए, योग का अर्थ है जोड़ना। जैसा हम हमेशा से समझते आए हैं, योग किसी भी चीज को जोड़ता है। तो योग हमें मानसिक तौर पर शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य की बात करें तो योग हमें पूर्ण तरीके से जोड़कर हमें एक पूर्ण हेल्थ मिलती है। अब महर्षि पतंजलि ने इसीलिए योग को अष्टांग योग कहा है, और योग को 8 पहलुओं में बांटा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब यदि हम यम नियम की बात करें तो यम नियम है शरीर शुद्धि और आहार शुद्धि। योग आसन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि यदि हम अपने शरीर को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखना सीख लेते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों पर निजात पा सकते हैं। जब हमारा शरीर शुद्धि हो गई है, आहार शुद्धि हो गई है, और हमारा शरीर अपने आप को कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस में रख सकता है और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो हम मानसिक तौर पर बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जिससे हम जो आगे के पड़ाव हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। बहुत सी क्रियाएं हैं जो योग में की जाती हैं इन चीजों को अचीव करने के लिए, तो हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल शालू जी, तो योगाचार्य शालू गुप्ता हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं सुजाता रथ, और हमारे तमाम लिसनर्स बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे हमारे आज के योगा एक्सपर्ट से। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद लौटेंगे आज के बेहद खास रेडियो डॉक्टर में, स्पेशल ऑन इंटरनेशनल योगा डे।

0: स्वास्थ्य के लिए योग, यही आज का हमारा विषय है ऑन वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे में। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शालू गुप्ता और मैं हूं साथ में सुजाता रथ। तो शालू जी, आपने बताया कि योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो ही है जोड़ना। तो एक सवाल आया है मनोहर लाल गांधी जी का कि योग द्वारा हम अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं, अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं।
1: देखिए, आज का जो समय है इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं मेंटली। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स एट द वेरी सेम टाइम। होता क्या है कि हम लोग हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी फूड हैबिट्स हैं, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो ऑफिस एनवायरमेंट है, इससे हमने बिल्कुल अपनी बॉडी की प्रायोरिटी को खत्म कर दिया है। हमें सीखना ये है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया सीखने के लिए हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमारा शरीर भी कहीं एग्जिस्ट करता है। जब तक हमारी ब्लड रिपोर्ट्स में कोई बीमारी नहीं आ जाती तब तक हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। योग करने से क्या होगा? योग का सबसे पहला अर्थ ही है जोड़ना। और जैसे मैंने कहा, योग को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने जीवन में नियम बनाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप अपने दिनचर्या में नियम बनाएंगे, वैसे वैसे आपके हर चीज का नियम हो जाएगा। सोने का समय, उठने का समय, खाना खाने का समय, शौच जाने का समय। और जैसे जैसे आपका समय फिक्स होता जाएगा, वैसे वैसे आप ये समझेंगे कि आपके शरीर में जो सुबह उठते ही थकान होना, सारा दिन परेशानी रहना, बॉडी में लथार्जी रहना, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन होना, ये सब चला जाएगा। आप अगर एक अच्छा आहार अपनाएंगे, सीजनल फ्रूट्स खाएंगे, सीजनल लिक्विड्स लेंगे, तो उसको लेने के बाद आपका शरीर निरोगी रहेगा। और जब शरीर निरोगी रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जीवन में आपके शरीर की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे जैसे शरीर निरोगी होगा, उसके बाद जब हम अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो हम अपने शरीर को जिसे हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, ऐसे ऐसे हम अपने शरीर को परमात्मा से मेल कर पाएंगे, जिसमें फिर हमारी धारणा, ध्यान और समाधि आ जाती है, जिसमें हम राम नाम, प्रभु नाम सब कुछ जोड़ देते हैं।
0: जी, कुछ कॉलर्स हैं। हेलो।
2: हाँ दीदी, प्रणाम।
0: प्रणाम, कौन बोल रहे हैं?
2: सतीश कुमार पांडे।
0: हाँ सतीश कुमार पांडे जी बोल रहे हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
2: आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद
2: जी। और डॉक्टर मैम को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी।

0: में मेरे से आपसे सवाल ये है कि कुछ आंखों के लिए कोई योगा है क्या?
1: हाँ जी बिल्कुल है। आंख,
0: जी हमको थोड़ा बता दीजिए।
1: हाँ जी, आपकी आंखें कमजोर हैं या आंखों से पानी आता है?
0: जी पानी नहीं दे, मैं आँख थोड़ा कमजोर है।
1: ठीक है, देखिए आंखों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं त्राटक। वो हमारे षटकर्मा का पार्ट है। उसमें जनरली हम करते क्या है कि आपने किसी भी, त्राटक का अर्थ है कि आप किसी भी वस्तु पर लगातार देखते रहें। इसको करने का प्रोसेस क्या होता है कि आपने मान लीजिए कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर लिया और एक मोमबत्ती को जला लिया। आप उस मोमबत्ती की लौ को एक टक देखते रहेंगे, तब तक देखते रहेंगे जब तक आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। मतलब आंसू आने से पहले ही आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये एक्सरसाइज आप कई और जगह और कई और चीजों से भी कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरी चीज है, अपनी आंखों को आंवला से धोएं, आंवले के पानी से धोएं या त्रिफला के पानी से धोएं। रात को त्रिफला भिगा दें और सुबह उससे अपनी आंखों का आई वॉश करें, उससे भी आंखों में बहुत ही अच्छा असर आता है। तीसरी चीज है त्रिफला, त्रिफला
0: जी।
1: और तीसरा है विटामिन ए रिच चीजें खाएं, जिनमें जैसे पपीता है, सेब है, अनार है। आहार का भी ध्यान साथ साथ रखना पड़ेगा, तभी आपकी आंखों में रोशनी लौट वापस आएगी और आपकी आंखें पहले से बेटर हो जाएंगी। शुक्रिया सतीश जी, दार्जिलिंग से हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कॉलर है, उनसे जुड़ते हैं। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: हाँ नमस्कार,
2: मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ।
1: जी राजा साहब बताइए।
2: जी जी, आज जैसा कि योग दिवस है तो मैं खास करके ये जानना चाहूंगा, जैसे हम लोगों का काम होता है कि काफी 8-9 बजे से बैठो और शाम को लगभग 5-6 बज जाता है, तो इसमें हम लोग ज्यादा टहल नहीं पाते हैं, इस वजह से जो है कुछ मोटापा भी बढ़ने लगता है। तो कौन से आसन या योगा है, हमें मैम से ये पूछना है कि जो अपने आप सुबह या शाम में उनका उपयोग करें और अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान केंद्रित करके अपनी सेहत को फिट रखें और ज्यादा मोटापा ना बढ़ने पाए, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं।
1: हाँ जी राजा जी, देखिए इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, कई सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। नंबर वन, जब आप अपने ऑफिस में आते हैं और आपको ये पता है कि मैंने 7 से 8 घंटे बैठना है, तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे अपने अपने काम के दौरान हर 30 से 40 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट मैं टहलने के लिए जाऊं, अपनी सीट पर ही ना बैठा रहूं। नंबर थ्री, अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि टांगे लटकाकर जमीन पर ना रखी हों। मतलब ये है कि आप पैरों के नीचे एक छोटी सी चौकी रखें कि आपके पैर जमीन से ऊपर की तरफ हों। इससे आपकी कमर पर कम असर आएगा और आप ज्यादा देर तक अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। चौथी चीज है कि जो भी हमें ये नहीं सोचना कि मैं अब ऑफिस आ गया हूं तो मैं डिब्बा बंद खाना ले आया हूं तो मुझे बस रोटी सब्जी खाकर घर चले जाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी रीजन में रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, वहां पर अवेलेबल जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी जूसेस है या जो भी सलाद है, आपको उसका पूरा सेवन करना है। यदि आपका भोजन अच्छा है तो आपके शरीर में फैट जमा नहीं होगा।
2: जी जी।
1: अब रही बात आसन की, आसन के लिए हमें ये ध्यान रखना है जो लोग बैठे रहते हैं कि हमेशा जो आगे झुकने वाले आसन होते हैं जिसमें हमारा पेट दबता है, हमें ऐसे आसन ज्यादा करने चाहिए। और क्रियाओं में आप अग्निसार क्रिया कर सकते हैं।
2: आसन सुबह करें कि शाम को भी कर सकता है?
1: शाम को सूरज ढलने से पहले आप कर सकते हैं। और खाने के खाली पेट होना चाहिए जब भी आप आसन करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक अग्निसार क्रिया बहुत ज्यादा फायदे है जिसमें सांस लेना, सांस छोड़ना और उसके साथ साथ पेट को घुमाना, इससे बहुत लाभ होगा आपको।
2: ओके मैम।
1: जी जी राजा साहब, बहुत ही अच्छे से शालू जी ने हमें बताया ये सारी बातें। एक मैसेज है मोहम्मद सरफराज आलम जी का दर्शना बाजार से कि ये साइटिका के दर्द से परेशान है, कौन सा योग करना चाहिए? हाँ जी, देखिए साइटिका में साइटिका में वैसे तो बहुत से आसन होते हैं, जैसे गरुड़ आसन है, वज्रासन है, गौमुखासन है, पवन मुक्तासन है, लेकिन हमें हर इंसान को अपनी बॉडी का नेचर देखना चाहिए कोई भी आसन करने से पहले। यदि तो आपको दर्द एक पैर में जा रहा है तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, और यदि दर्द दोनों

0: पैरों में जा रहा है तो कुछ और प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। तो जो बहुत बेसिक सी चीज है उसमें क्या है, जैसे आप सीधे लेट जाएं और अपने पंजों को एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, तो कम से कम 10 बार इसे रिपीट करें दोनों ही पंजों के साथ, नंबर वन। नंबर टू, जो आपका पैर है उसको आपको सीधे ही लेटे रहना है और पैर को बिल्कुल स्ट्रेट, अपनी टांग को ऊपर उठाना है। जब आपकी टांग ऊपर उठेगी तब तक उठाएं जब तक आपसे सहन होता है कि वो दर्द हो रहा है। जब आपको लगता है दर्द सहन से बाहर है तब वहां स्टॉप कर दीजिए। तो उस पैर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इसी तरह दोनों पैरों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको आसन के नाम बता दिए हैं, बस आपको खाने पीने में ये ध्यान देना है कि आप वायु कारक चीजें ना खाएं, दूध और दही का सेवन छोड़ दें, और हार श्रृंगार के पत्ते बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, उन्हें उबालकर उसका पानी पी लीजिए।
1: रोहतक से नितिन कुंडू जी का सवाल है कि एट व्हाट एज आवर चिल्ड्रन कैन स्टार्ट योगा।
0: देखिए, योगा के लिए तो कोई एज ही नहीं है। आपने देखा ना, जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है और अपने बेड पर होता है वो भी अपने हाथ पैर मारता रहता है, तो योगा के लिए कोई एज नहीं है। योगा और योग आसन तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, चाहे वो 2 महीने का बच्चा हो चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, उम्र नहीं देखी जाती। सिर्फ ये देखा जाता है कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कोई हार्ट पेशेंट है या कोई और है तब हम योग नहीं कर सकते, अदरवाइज आप किसी भी उम्र में योगा कर सकते हैं।
1: तो अगर यहाँ पर अगर कोई बीमारी है किसी को तो वो किसी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करें।
0: हाँ जी, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप किसी भी योग शिक्षक के प्रशिक्षण में ही वो करेंगे। हाँ जी।
1: और इन्होंने मैम एक और क्वेश्चन भी किया कि प्लीज सजेस्ट योगा फॉर शार्प मेमोरी।
0: ओके, देखिए, शार्प मेमोरी के लिए तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, जैसे आपने गाना सुना, हम कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिसपे जब वो बजते हैं तो हमारे पैर धुनकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें हम बिल्कुल साइलेंट बैठे रहते हैं, जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा, जब ये बजता है तो हमें ऐसा लगता है कि दिमाग बिल्कुल शांत है। तो शार्प मेमोरी के लिए हमेशा कोशिश करें कि आप बिल्कुल शांत धुने सुने, ओम चैंटिंग, ओंकार, इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। और डीप ब्रीदिंग करें, डीप अच्छी मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्राणायाम। कोई भी प्राणायाम करें, सांस भरें, रोकें और छोड़ें। जैसे जैसे आपकी सांस को रोकने की टेंडेंसी बेटर होती जाएगी वैसे वैसे आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी।
1: तो शालू जी, अपने गानों की बात कही कि ऐसे गाने जो जिनको हम एकदम शांत रहकर सुन सके, तो ये गाना जो मैं आपकी पसंद का प्ले करने जा रही हूं, मेरे ख्याल से ये गाना उस कैटेगरी में आता है, सुनिए।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और आज का विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर विशेष है ऑन इंटरनेशनल योगा डे। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शालू गुप्ता जी हमारे साथ हैं, योगाचार्य। डॉक्टर गुप्ता, कुछ देर पहले हमने एक गाना सुना था आपकी पसंद का, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो हमारे जो कुछ लिसनर्स हैं उनका ये कहना है, खास करके दिनेश दयाल जी ने कहा है कि आपके गाने को सुनकर हमें याद आया कि ओ योगा तेरे बिना क्या जीना।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: तो आज योग जो है हमारे जीवन का जो है एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। मैं कहूंगी कि धीरे धीरे सारे विश्व में इस ये संदेश फैल चुका है और सभी के जीवन का जो है एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। कुछ कॉलर्स हैं जिनकी बात हम सुन ले। हेलो।
3: हेलो।
1: हाँ जी।
3: हाँ नमस्कार, मैम गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार गुरविंदर जी।
3: डॉक्टर शालू गुप्ता जी को भी नमस्कार और प्रणाम।
2: नमस्कार।
3: मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी मरीज का एलोपैथिक आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में इलाज चल रहा है, जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर योग की सहायता ले ली जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो क्या ये संभव है?
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल संभव है। और सबसे पहले योग की सहायता लेनी चाहिए, फिर कहीं और जाना चाहिए।
3: मैडम एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है कि कई बार खाना खाते समय हिचकी आ जाती है, तो उस समय कौन सा योग करें?
2: वैसे ऐसे में देखिए दो चीजें हैं, एक तो हम अपनी जीभ को पकड़ लें थोड़ी देर के लिए। जनरली आप 5-7-10 मिनट के लिए जीभ को पकड़ लेते हैं तो हिचकी आना बंद हो जाती है। दूसरी चीज है आप तुरंत पानी पी लें, उससे भी हिचकी बंद हो जाती है।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू सुजाता मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। एक व्हाट्सएप मैसेज है शालू जी, ये हाँ लिखा है शरद चंद्र पाणिग्रही जी ने ओडिशा से। इनका 3 महीने पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है इनकी, और ये लिखते हैं कि सर्जरी से पहले ये बहुत सारे योगासन किया करते थे, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, वश्चिका, वज्रासन और भी बहुत सारे नाम इन्होंने गिनाए हैं। और अभी इनके जो स्टूल है वो क्लियर नहीं होता है, तो इन्हें पूछा है कि काइंडली एडवाइस विच टाइप ऑफ योगा और प्राणायाम कैन आई कंटिन्यू।
2: ठीक है,

0: देखिए आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि आप किसी तरह की कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका पेट बंधा है, तो आप अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, उससे उससे भी आपका पेट साफ होगा। दूसरी चीज है मंडूक आसन, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।
1: ये आसन ही कर सकते हैं, और पहले जो आसन किया करते थे वो
0: उसमें ओपन हार्ट सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्राणायाम नहीं करने चाहिए, तो आप नॉर्मल अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की रिकवरी कितनी हो चुकी है। अगर आपकी बॉडी फुली रिकवर हो चुकी है तो आप धीरे धीरे आसन को अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, अदरवाइज अगर आपकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है तो आप और थोड़े दिन रुक जाइए, तब तक आप सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर सकते हैं।
1: जी हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी
2: मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार, बोलिए।
2: अंशुल बात कर रहा हूँ मेरठ से।
1: जी जी अंशुल बोलिए।
2: जी मैम, मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कुछ खा लिया उसके बाद गैस बन गई, बेवजह भी बन गई, क्या योग के

शायद शाहिद कपूर के नाल भी आजकल ना स्टोरी कुछ इस तरीके से ही चल रही है कि कुछ ना कुछ अगल बगल इतना ना चल ही रहा है कि राइट मूवीज चूज करने तो बाद राइट मतलब लीक तो हट के मूवीज चूज करने तो बाद मूवी जी है ना वो कुछ परफेक्ट अपना जो डिस्प्ले हैगा वो थिएटर्स दे विच नहीं दिखा रहे चाहे आप फरवरी में आई वो रोमियो की गल करिए रोमियो टोटली वो लीक तो हट के मूवी सी तो जितों बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेशंस लाई हैं जैसे कोई ट्रेलर जैसे बहुत सोना कट्टिया गया था मूवी की जो हाइप सी वो काफ़ी ज़्यादा वधिया बनाई गई सी लेकिन मूवी की जी परफॉर्मेंस सी ना वो बिलो एवरेज ही रह गई तो यही चीज़ कुछ हुई है जी हमने इस हफ्ते रिलीज़ हुई शाहिद कपूर की मोस्ट एंटीसीपेटेड मूवी कॉकटेल 2 के नाल कॉकटेल 1 जी 2012 के आई सी जिसे सैफ अली खान नज़र आए थे दीपिका पादुकोण नज़र आए थे ते नाल नज़र आए थे डानी ते मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई सी उस टाइम के स्टोरी लाइनअप उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा अगे का सगा इम्तियाज अली की लिखी हुई स्टोरी सी मूवी नू काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया सगा ते इन्ने साल बाद जो कॉकटेल 2 बनाई गई तो एवरीवन वॉज एक्सपैक्टिंग कि वो मैच में दोबारा रीक्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसका सीक्वल बनाने वास्ते तकरीबन जरा 14 साल का टफ सफर है ना 12 to 14 साल का सफर जरा पै गया से सीक्वल के वास्ते तो दो मूवी का ट्रेलर जरा काफ़ी वधिया कट गया सोंग्स जोड़े से मूवी के काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे थे लेकिन मूवी की जी हले तक जी वीकेंड परफॉर्मेंसेज है वो काफ़ी मिली जुली रिएक्शन के नाल आई है क्रिटिक्स जो कह रहे हैं कि मूवी कितने ना कितने लैक करती हैगी है हालांकि जो शाहिद कपूर के कृतिसानन के फैन है उन्होंने जोड़ी के फैन है वो कह रहे हैं कि मूवी अपना मैजिक क्रिएट करने च कितने ना कितने कामयाब रही है दस दिए कि फिल्म जी हैगी है वो काफ़ी ज़्यादा अजकल सिचुएशन लैके जी है वो दिखाई गई हैगी तो मूवी डायरेक्ट किया है होमी अजानिया ने तो बेसिकली मूवी जी स्टोरी हैगी है वो शाहिद कपूर तो रश्मिका मंदाना जिन्हों का किरदार नाम कुणाल तो दिया है वो एक कपल हैगा जो एक कंफर्टेबल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के रह रहे हैं तो उन्होंने लाइफ सब कुछ सॉर्टिड आउट चल रही है अंडर एंड अनलैस उन्होंने लाइफ के एली यानी कि कृति फाइनेंस जी है वो एंटर होती हैगी है उसके आने की कॉम्पलैक्सिटी आ जाती है रिलेशनशिप के बच्चे किस तरीके उन्होंने जी लव लाइफ है लव एंगल्स जो है वो बदल जाते यही इस मूवी के दिखाने की जी कोशिश है वो की गई हैगी है मूवी का जो विजुअल एंड म्यूजिक है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हैगे है मतलब अगर मूवी में तुम विजुअल एंड म्यूजिक के उत्ते मार्क्स देना चाहोगे तो 10 out of 10 दिते जा सकते हैं क्योंकि मूवी शूट बहुत खूबसूरत तरीके दे नाल कीती गई हैगी म्यूजिक जिहड़ा हैगा बहुत सोहना कीता गया बीजीएम स्पेसिफिकली बैकग्राउंड म्यूजिक जिहड़ा हैगा वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज दे नाल सेटअप कीता गया है।

बिल्कुल जी, एक लड़की को देखा तो ऐसा जरूर फील होगा, क्योंकि इस टाइम जिस तरीके दे नाल साड़ी इंडियन वुमेन टीम परफॉर्म कर रही है, तो बंदे ने देख के जरूर लगता है कि यार जिस तरीके दे नाल परफॉर्म कर रहे हैं डेफिनेटली कितना कितने T20 वर्ल्ड कप दे विच जी अपनी जड़ी जित है उसनू पक्का करके आनगे ही आनगे। हालांकि इस टाइम अगर आप इंडियन टीम दे पोजीशन की गल करिए, साउथ अफ्रीका दे नाल मैच करते हुए भारत ने जरा टोटल अफ्रीका ने टारगेट देता है 159 रन का देता है, तो एचओ कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 24 तो शेफाली ने सब तो ज़्यादा 31 रन बनाए है। हालांकि बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपैक्टेशन इंडियन बैटिंग लाइनअप तो भारत ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट गवा के 158 रन जरूर बनाए, जिसे सब तो ज्यादा शेफाली वर्मा ने 15 गेंदा 31 रन बनाए, तो उन्होंने अपनी पारी के 4 चौके और 1 छक्का जरा सी ओला। इस तरह दीप्ति शर्मा ने भी 29 रन बनाए, जिसमें दस्या कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी

नहीं करना, नंबर तुहानू पता है, याद है, दिल दे उत्ते लिखे होया। सो 9855101027 दे उत्ते तुसी अपने पुराने हिंदी फिल्मी गीतां दी या पुराने पंजाबी फिल्मां गीतां दी फरमाइशां जिहड़ियां हैगियां रात 10 बजे तक अपने दोस्त दंदना दे नाल सचन दे नाल शेयर कर सकते हो। तो फरमाइश के नाल अपना नाम, अपना पता, अपनी जिहड़ी कोई मैसेज अगर तुसी लिख के भेजना चाहुंदे हो वो भी लिख के भेजो, तो थोड़ा जिहा सब्र जरूर नाल भेजो। कई बार की होंगे कि बार बार मैसेजेस करी जाते कि मेरी फरमाइश लो, मेरी फरमाइश लो। मैं सीक्वेंस वाइज फरमाइशा सारिया लैन की कोशिश करूँगा, सारे अपने दोस्तों का नाम जोड़ा है प्रोग्राम शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस उम्मीद करांगा तुहाडे थोड़े जे सब्र ते थोड़े बहुत सारे प्यार दी। सो शुरू कर दें जी अज की इस महफिल नू, इस प्यारी जी फरमाइश के नाल। ते यह फरमाइश जिहड़ी को आई है साढ़े कोल जी अनारकली बाजार जगराओं पंजाब तो। फरमाइश करने वाले ने सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक और विनोद पुरी। इन्होंने लिखा है जी खुश रहो, खुशियां बांटो जी। और फरमाइश की है जी तेजाब फिल्म दे गीत सो गया ये जहां सो गई सारी मंजिल। लो जी नितिन मुकेश ते अलका शबीर ते कोरस की आवाज़ के ट्रैक लैके मैं तेजाब मूवी के नाल जुड़ रहा। तो तुसी भी अपनी फरमाइशा मेरे 9855101027 तक भेजते रहो। तो तद तक इस फरमाइश के नाल एक नाम जो मैं होर जुड़ना चाहूँगा सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका तो, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। सो तुसी अपनी फरमाइशा भेजो ते मैं लेके आ रहा जी थोड़े प्यारे।

तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से

जहां मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहां मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये

अगली फरमाइश चढ़ी आई है आया जी गाँव घमंडिया सूरतगढ़ तो जगदीश ठोकिया प्रमीला प्रमिला ढोकिया ज्योति शिवम सरिता सचिन अमना तमन्ना साइना विष्णु ठोकिया दोहती ईवा धारानिया इन्होंने फरमाइश की फिल्म नागिन दे आवा गीत तंडोले मंडोले कौन बचाए बांसुरी आवाज लता मंगेशकर दी आप हमारे पसंद का गीत सुनाए तो बहुत अच्छा लगता लो जी तुहानू आप वधिया बिल्कुल फील करा देंगे जो तुसी फरमाइश की हैगी है तो मैं इस फरमाइश के नाल आ रहे हैं जी तुम भी अपनी फरमाइशा 9855101027 तक भेजते रहो तो इंजॉय करो लता मंगेशकर की आवाज़ के अगला।

प्रोग्राम चल रहा है जी। दिल चाहता है तो अगली फरमाइश लैके मैं थोड़ा छोड़ गया। अगली फरमाइश जी आई है वो आई है जी पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो। फरमाइश करने वाले ने मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा ते भूमिका अरोड़ा। इन्होंने फरमाइश की फिल्म रॉकी दे ट्रैक हम तुमसे मिले फिर चुता हो गए। इस दिन आली में कुछ एक नाम जोड़ना चाहूंगा, नंगलखेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। इस तो अलावा पिंड यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र तो संतोष खड़से ते विनोद खड़से। नाल साढ़े कोल जिहड़ा नाम जोड़ना अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर तो कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर ते हरविंदर मान। इस तो अलावा जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दशानी और नमित आहूजा। नाल है जी साढ़े कोल सुरेंद्र कुमार सोबती, नीतू सोबती, साहिल सोबती, नेहा सोबती, ऋतिक, राहुल, मेघा, आनंद, सारा सोबती परवास शाहकोट जिला जलंधर तो। यह सब दी मिली जुली फरमाइश लैके मैं तुहाडे नाल जुड़ रहा ते अपनी फरमाइश 9855101027 रात 10 बजे तक मेरे नाल शेयर करते रहो। मैं जुड़िया हुआ तुहाडे नाल अगली फरमाइश लैके।

अगली फरमाइश है जी, उत्तम नगर दिल्ली तो बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश तीनों ने फरमाइश की थी फिल्म डॉन द गीत अरे दीवानो मुझे पहचानो। इसी फरमाइश के नाल मैं नाम जोड़ रहा जी, डाक खान निमानाबाद नेड़े सफीदो मंडी जला जींद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर। इस तो अलावा जिहड़ा मैं नाम जोड़ रहा हैगा वह हैगा जी जनकपुरी सहारन तो जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, नाल जी कस्ब बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्ना, सिमरत, गुरशब्द सिंह, राहुल, कृष्णा पाक दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना। नाल है जी साढ़े कोल दतरंगी भाटपारा छत्तीसगढ़ तो हीरा मनी वर्मा, पारस मनी वर्मा, पुष्पेंद्र मनी वर्मा ते नोखे लाल वर्मा। नाल है साढ़े कोल ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्स हरिद्वार तो, इस अलावा गांव फरासी जिला हिसार तो राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी। मैसेज करने वाले नाल ने ग्राम पंचायत काले गांव जफाराबाद तो श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित, प्रथमेश प्रणाली, सरवत सानवी और हर्षिता। इस अलावा रजक मोहम्मद, शामिद बेगम, इमरान खान ते इरफान खान ए मैसेज किया जी हनुमानगढ़ राजस्थान तो। सो इन्हें मिली जुली फरमाइश से प्यारा जो ट्रैक में लैके आ रहे हैं जी किशोर कुमार की आवाज़ के।

कुछ कर ले और बहुत सारा प्यार। आज के इस महफिल को शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी के साथ। शहर में पहली बारिश हुई थी। बस स्टैंड के छत के नीचे खड़ी नंदनी अपनी बस का इंतजार कर रही थी, तभी एक लड़का उसके पास आया।

और बोला, माफ कीजिए, क्या आप समय बता सकती हैं? नंदिनी ने घड़ी देखी और कहा, शाम के 6:15। बस इतनी सी बात थी, लेकिन यहीं से एक कहानी शुरू हुई। अगले कई महीनों तक दोनों उसी बस स्टैंड पर मिलते रहे, कभी मौसम की बातें, कभी सपनों की बातें, और कभी सिर्फ और सिर्फ खामोशियां। एक दिन लड़के ने कहा, मोहब्बत का इजहार लफ्जों में जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते आंखों की खामोशी में भी मुकम्मल हो जाते हैं। नंदिनी मुस्कुरा दी। समय बीतता गया, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। हर शाम बस स्टैंड के पास वाली चाय की दुकान पर एक चाय दो कपों में बांट कर पीते। फिर एक दिन लड़के की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। विदा लेते समय उसने कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे नंदिनी। नंदिनी ने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करूंगी। उस दिन चाय के दो कप तो थे, लेकिन दोनों की आंखों में अनकहे आंसू भी थे। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे भी आ जाते हैं जो मुकद्दर में नहीं होते मगर दिल में उतर जाते हैं। साल गुजर गए, महीने बीत गए। एक शाम फिर उसे शहर में बारिश हुई। नंदिनी उसी चाय की दुकान के सामने खड़ी थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, एक चाय दो कपों में मिलेगी? वह पलटी, सामने वही लड़का खड़ा था। दोनों मुस्कुरा दिए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार कहानी अधूरी नहीं थी। परसों का फासला भी मिट गया। एक मुलाकात में मोहब्बत हारती नहीं कभी सच्चे जज्बात से, और उस दिन दोनों ने समझ लिया कि सच्चा प्यार लौट कर जरूर आता है, बस उसका समय अलग होता है। वो रिश्ता ही क्या जो वक्त से हार जाए, वो मोहब्बत ही क्या जो हालातों से डर जाए। सच्चे दिल से चाहो अगर किसी को, तो हर दूरी एक दिन प्यार में बदल जाए। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि इंतजार में भी मुस्कुराने का नाम है। शामे गजल के इस महफिल में कुछ कहानियां, कुछ गजलें इसी तरह चलती रहेंगी रात 10:30 तक।

शामे गजल की इस महफिल में चल रही हैं कुछ कहानियाँ। हर सुबह 8 बजे की ट्रेन से एक लड़की सफ़र करती थी, उसी डिब्बे में एक लड़का भी बैठता था। दोनों एक दूसरे को देखते थे लेकिन कभी बात नहीं करते थे। एक दिन लड़की नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन लड़के ने स्टेशन मास्टर से पूछा। पता चला कि लड़की के पिता का तबादला हो गया है। महीनों तक लड़का उसी सीट को देखता रहा, फिर एक साल बाद अचानक वही लड़की उसी ट्रेन में आकर बैठ गई। लड़का मुस्कुराया और बोला, आज भी खिड़की वाली सीट तुम्हारी ही है। लड़की की आंखें भर आई, जो दिल में बस जाते हैं वो दूर होकर भी कहाँ दूर जाते हैं। बस ये कहानी की शुरुआत थी। मुलाकातें मुकद्दर में लिखी हों तो मिल ही जाती हैं, राहें कितनी भी जुदा हों ये साथ छुड़ ही जाती हैं। शामी गजल के इस महफिल को लेके चल रहा हूँ मैं आपके साथ रात 10:30 तक।

कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी दोस्त एक दूसरे से विदा ले रहे थे। उसी भीड़ में आदित्य भी खड़ा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, रिया। 4 साल तक दोनों अच्छे दोस्त रहे, लेकिन आदित्य कभी अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। जब रिया जाने लगी तो आदित्य ने कांपते हाथों से उसे एक गुलाब दिया। रिया मुस्कुराई और बोली, अगर ये 4 साल पहले दिया होता तो शायद जवाब भी कुछ और होता। इतना कहकर वो चली गई। आदित्य वहीं खड़ा रहा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रिया वापस लौटी और बोले, वैसे अभी भी बहुत देरी नहीं है। दोनों मुस्कुरा दिए। कभी कभी मोहब्बत को सिर्फ इजहार की देर होती है, दिल की बात को लबों तक आने में वक्त लग जाता है, कुछ रिश्तों को मुकम्मल होने में वक्त लग जाता है। जो सच में अपने हो वो कहीं नहीं जाते, उन्हें लौट कर आने में बस थोड़ा वक्त लग जाता है। दोस्तों, प्यार में सबसे मुश्किल काम मोहब्बत

0: लड़की के फोन पर गलती से एक कॉल आया।
1: हेलो, सॉरी, शायद गलत नंबर लग गया।
0: लेकिन उसे गलत नंबर ने सही रिश्ता बना दिया। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई, फिर आदत बन गई। एक दिन लड़की ने पूछा, अगर हम कभी मिले ही नहीं तो? लड़के ने हंस कर कहा, कुछ लोग आंखों से नहीं दिल से पहचाने जाते हैं। 6 महीने बाद दोनों पहली बार मिले और हैरानी की बात यह थी कि उन्हें लगा जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। कभी कभी तकदीर ऐसे मोड़ पर लाती है जहां अजनबी ही सबसे अपना बन जाता है। जिसे हम गलती समझते हैं अक्सर वही जिंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा बन जाता है। जिंदगी में आने वाले हर इंसान की एक वजह होती है दोस्तों, बस हमें उसे समझने की देर होती है। शामी गजल के इस महफिल को अब समेटने की इजाजत दीजिए। मिलते हैं इस महफिल के उस पार एक प्यार का नगमा है मैं।